0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश में विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इसे 5,640 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने प्रधानमंत्री को हवाई अड्डे की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी दी। श्री मोदी आज राज्य में लगभग 18,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
1: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेक स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फी थिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम की ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। इसमें यह भी अनिवार्य है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अपराधों की जांच पूरी की जाए, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाई जानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया। मध्य प्रदेश पुलिस के नशा मुक्त अभियान नशे से दूरी है जरूरी के दूसरे चरण ने 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन सभी 5 उपलब्धियों को मान्यता दी है। इस अभियान ने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए। इंदौर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने 17 लाख से अधिक लोगों को नशा विरोधी ई शपथ दिलाई और 8,534 प्रतिभागियों की मानव श्रृंखला बनाई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बातचीत की और पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। श्री जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए

0: ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। वहीं मुक्केबाजी में 10 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक में रजत, जबकि यशवीर सिंह ने कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर ने डेकथलॉन में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत ने अब तक 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक सहित 23 पदक जीत लिए हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरम मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Greenfield Alluri Sitaram Raju International Airport at Bhogpuram in Vijayanagaram district of Andhra Pradesh today. On his arrival at the airport, the Prime Minister was received by Andhra Pradesh Governor S. Abdul Nazir, Chief Minister N. Chandrababu Naidu and other dignitaries. Mr. Modi inaugurated the passenger terminal building and took a walkthrough of the Greenfield Airport. He also reviewed the airport's state-of-the-art passenger facilities and was briefed by officials on its design, advanced technology,

0: किया जाता है और सबसे बड़ी बात कि इस 50 मिनट के सफर को मधुरता की ओढ़नी ओढ़ाई जाती है।
1: और यही तो हमारे कार्यक्रम की रूह श्रुति, इस घर तक आप पहुंच सकते हैं कई राज्यों से। आप हमें सुन रहे हैं एफएम गोल्ड एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़
0: और इंद्रप्रस्थ के हमारे श्रोता हमसे जुड़े हैं 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और हमारे जो डिजिटल परिवार के जो देश विदेश में फैला हुआ है ना, वो हमें सुन सकते हैं एआईआर न्यूज लाइव 24x7 यूट्यूब चैनल पर।
1: और श्रोता, ये डिजिटल परिवार तो बहुत बड़ा हो गया है। कभी कभी सोचती हूँ कि रेडियो की आवाज अब कितनी दूर दूर तक पहुँच रही है, कितने घरों को रोशन कर रही है।
0: यही तो ताकत है ना रेडियो की, ना स्क्रीन की जरूरत है, ना चश्मे की, बस कान दीजिए, दिल खोलिए और हवा के बन जाते हैं।
1: और दिल खुलता है श्रुति, उसमें से निकलती है वो बात ही, वो जो बहुत जरूरी है सुनना। इसलिए हम अब हमेशा अपने श्रोताओं से बात करते हैं, उन्हें लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, आज भी हमारे मन में एक सवाल है जो हम आपसे पूछना चाहते हैं, और श्रुति जी लेकर आई हैं वो सवाल।
0: बिल्कुल। और सवाल है कि आपने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर को जब देखा, तो उस दौर में आपको किस बात ने या किस शख्स ने सबसे ज्यादा हिम्मत दी? तो लम्हा क्या था जब आपने ठान लिया, नहीं अब मैं नहीं टूटूंगा?
1: ये सवाल सुनकर ही मन भावुक हो जाता है। हमारे श्रोताओं ने जो भी देखा है, जो झेला है, जो सहा है, निश्चित ही उनकी वो कहानियां हम सबके लिए किसी प्रेरणा पुंज से कम नहीं होंगी।
0: बिल्कुल। और इसीलिए दोस्तों, अपने दिल की वो हर बात हमसे साझा कीजिए, हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है fmgoldga@gmail.com। दोबारा सुनिए, fmgoldga@gmail.com। हर खत को हम पूरे प्यार और ध्यान से कार्यक्रम में पढ़ते हैं, तो देर मत कीजिए दोस्तों। और अभी के लिए एक सुरीले गीत के साथ हम आपका

0: सावन झुमके इस फिल्म में ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में।
1: देखो राधा, राजर्षि पुरुषोत्तम दास अक्सर कहा करते थे कि जीवन के अंतिम क्षण तक अपनी हर शक्ति समाज के हित में लगा देना ही सच्चा सुख है। ये विचार, ये सुविचार है आज का।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं सोच रही थी कि आपका सुविचार आने ही वाला है।
1: हाँ, और ये आज के दिन के साथ बड़ा गहराई से जुड़ता है, क्योंकि 1 अगस्त की तारीख में ही समाज को समर्पित 2 महान जीवन आपस में मिलते हैं।
0: जी हाँ, 1 अगस्त 1920 को मुंबई में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम सांस ली थी। उन्होंने केसरी और मराठा नाम के समाचार पत्र शुरू किए थे। उनका नारा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा आज भी हर भारतीय के मन में गूंजता है। इसी वजह से जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी थी।
1: और उसी 1 अगस्त की तारीख को 1882 में इलाहाबाद में पुरुषोत्तम दास टंडन जी का जन्म हुआ था। टंडन जी हिंदी भाषा के अनन्य सेवक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी सादगी और त्याग को देखते हुए उन्हें राजर्षि कहा गया। 1961 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
0: श्रुति, यानी कि एक ने कलम से जनता को जगाया तो दूसरे ने भाषा को राष्ट्र की एकता का सूत्र बनाया। मंजिल दोनों की ही एक थी, भारत की आजादी और स्वाभिमान। आज इसी 1 अगस्त को इन दोनों महान व्यक्तित्वों को नमन करते हैं और सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

0: आप सुन रहे थे अप्रैल फूल फिल्म से आवाज लता मंगेशकर की। आधार देखो, किसी भी शिशु की जिंदगी में पहली कहानी माँ की गोद से शुरू होती है, वहीं उसे ममता मिलती है, सुरक्षा मिलती है और जीवन का सबसे पहला संपूर्ण आहार भी। और शायद यही कारण है कि हर वर्ष 1 से 7 अगस्त तक पूरी दुनिया विश्व स्तनपान सप्ताह मनाती है। ये केवल एक स्वास्थ्य अभियान नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ बनाने का एक वैश्विक प्रयास है।
1: बिल्कुल श्रुति, और बिल्कुल सही बताया कि आज से शुरू हो गया है विश्व स्तनपान सप्ताह, और इस वर्ष की थीम है ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अस।

0: फैशनेबल स्टार्ट इन लाइफ स्ट्रेंथ एंड व्हाट वर्क्स, यानी जीवन की सतत और स्वस्थ शुरुआत के लिए स्तनपान जो प्रभावी है उसे और सशक्त बनाइए। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि केवल माँ की इच्छा नहीं बल्कि परिवार, अस्पताल, कार्यस्थल और समाज सभी का सहयोग स्तनपान को सफल बनाता है।
1: देखो राधा, जो व्यवस्थाएं पहले से अच्छा काम कर रही है ना, उन्हें और मजबूत बनाने की जरूरत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ की सलाह है कि शिशु को जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान कराया जाना चाहिए और पहले 6 महीने तक केवल माँ का ही दूध दिया जाना चाहिए। जन्म के बाद निकलने वाला जो पीला गाढ़ा दूध जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, बच्चे का पहला प्राकृतिक सुरक्षा कवच होता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसीलिए इसे कभी भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए।
0: अरे श्रुति, मुझे एक बात यहाँ याद आ रही है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग जो जगह बनाते हैं, स्पॉट्स बनाते हैं, तो जगह जगह मैं देखती हूँ गैर सरकारी और सरकारी संस्थान है, जैसे दिल्ली मेट्रो है, रेलवे स्टेशन, यहाँ भी ब्रेस्ट फीडिंग स्पॉट्स बनाए गए हैं कि अगर कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहे तो वहाँ पिला सकती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए इस विश्व स्तनपान सप्ताह को केवल जागरूकता की ही बात ना करें। तुम कुछ कहना चाह रही थी?
0: बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ कि ये भी याद रखना चाहिए कि स्तनपान का लाभ केवल शिशु को नहीं होता है श्रुति, माँ को भी मिलता है। माँ के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है और माँ बच्चे के बीच जो एक भावनात्मक जुड़ाव होता है ना, वो और गहरा हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि स्तनपान को केवल एक व्यक्तिगत निर्णय न माना जाए बल्कि पूरे परिवार और समाज की साझा जिम्मेदारी होनी चाहिए,
1: और बल्कि हर माँ को सही जानकारी, सम्मान

0: हमने लिया था मेरा गांव मेरा देश फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, और गीत को सुनते सुनते मैं देख रही थी श्रुति आप बहुत मुस्कुरा रही थी।
1: अरे मैं मुस्कुराई इसलिए रही थी क्योंकि सावन शुरू हो गया और मेरे घर कल आया घेवर और मैंने खूब सारा घेवर खाया है।
0: तो सावन में और होता ही क्या, झूले पड़ते हैं, हरियाली है और घेवर और फैनी की बाहर तो रहती है, इंदर से की गोलियां वो भी बिल्कुल।
1: और देखो राधा, जब घर परिवार के साथ बैठकर इन खुशियों को मनाया जाता है ना, तो ये छोटी छोटी खुशियां भी बहुत आनंद दे जाती है
0: घर परिवार में। तो कहती हूँ दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, और ये जो सावन है ना, ये तो सहेलियों का ही त्योहार है।
1: और देखो राधा, हमने प्रश्न भी यही पूछा था कि जब आपका कोई कठिन समय था, आपके जीवन का कठिन दौर था, तब आपने किससे मदद पाई, किसने आपकी हिम्मत बढ़ाई। तो एक मेल हमारे पास आया है और ये हमें मेल लिखा है गौरी शंकर वर्मा जी ने नांगलोई से, और ये लिख रहे हैं कि दोनों बेटियों को राम राम। 1986 की बात है, मेरे काम में मेरा बहुत नुकसान हो गया था और इस दौरान मेरी घरवाली ने बहुत साथ दिया, बहुत हिम्मत बढ़ाई और कहा कि जीवन का ये एक तजुर्बा है, सब ठीक हो जाएगा। कितनी अच्छी बात है ना,
0: बहुत ही सही
1: और
0: बात है।
1: और ये आगे लिख रहे हैं कि आज उनका जन्मदिन है और उनका नाम राजरानी है।
0: राजरानी जी को हमारी तरफ से, घरांगन परिवार की तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई हो।
1: बिल्कुल, हमारा सारा आकाशवाणी परिवार आपके जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहा है आज, है ना। और देखिए जिंदगी के 68 साल गुजर गए हैं ये कह रही हैं राजरानी जी, और पता ही नहीं चला अब सब कुछ ठीक हो गया है। गौरी शंकर,
0: और एक मैसेज मुझे भी मिला है श्रुति जी, ये लिखते हैं रोहिणी से प्रवीण कुमार जी, ये लिखते हैं जब ऐसा महसूस हुआ मैं टूटने लगा तब मेरे साथ थे मेरे माता पिता, जिन्होंने कहा कि सब्र और धैर्य से काम लो, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है।
1: देखो राधा, ये बात सही है कि जब कठिन समय आता है

0: लोग उसको झेल नहीं पाते हैं और अवसाद में चले जाते
1: बिल्कुल,
0: हैं।
1: बिल्कुल आज तो, की आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है ये।
0: हाँ, ये आज के दौर में कुछ ऐसा ही है कि हर कोई मानसिक रूप से एक लड़ाई लड़ रहा है। बाहर से देखने में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि सामने वाला व्यक्ति भीतर से कितना टूट रहा है, इसीलिए किसी के व्यक्तित्व के बारे में उसके व्यवहार से आंकना शायद गलत होगा। अवसाद अब हर ओर अपने पैर पसार चुका है, न इससे हमारे आपके दोस्त अछूते हैं, न हम और न ही हमारे फिल्मी सितारे भी, जिन्हें लाखों लोग अपना आदर्श मानते हैं।
1: बिल्कुल श्रुति, और इस भागती दौड़ती जिंदगी में यही माना जा रहा है कि अवसाद यानी डिप्रेशन के बारे में गंभीरता से सोचना बहुत जरूरी है। इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये भी एक बीमारी है। जो व्यक्ति अवसाद का शिकार हो उसका मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। देखिए, कई बार देखा जाता है ना, लोग डिप्रेशन में जाते हैं तो दोस्त कहने लगते हैं, अरे ये तो उदास रहने लगा, ये वो बिल्कुल नहीं करना है। उसे बेचारा कहकर उसके असहाय होने का एहसास दिलाना बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे कठिन समय में उसे सहयोग दें, उसे समझाएं, जहां तक संभव हो अवसाद से उभरने में उसकी मदद करें, वो ये बहुत जरूरी है। अगर आपका कोई परिचित व्यक्ति डिप्रेशन से जूझ रहा है तो उसकी मदद अवश्य करें और एक सकारात्मक सोच रखें।
0: हाँ देखो, अगर कोई परेशानी बताता है अपनी तो हम उसे तुरंत सीख देने लग जाते हैं, ये हमारा एक ह्यूमन नेचर है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: कहते हैं ऐसा कर लो ऐसा कर लो, लेकिन उसे प्रेरित करने के लिए किसी परामर्शदाता का बोला बहन लेते हैं हम, ऐसे बन जाते हैं कि जैसे हम ही उसके सबसे बड़े
1: और सारे गुरु हम ही हैं और हम ही उसे सब समझा देंगे कि क्या ठीक है क्या गलत।
0: हम ये भी नहीं सोचते कि वो किस स्थिति से गुजर रहा है। किसी के असली दर्द को तभी समझा जा सकता है जब खुद कोई उस पीड़ा से गुजरा हो, इसीलिए अवसाद से वो कैसे बाहर निकले और उसे इससे बाहर निकालना चाहिए और ज्ञान बांटने की बजाय उसकी बात को सुना जाना चाहिए पूरे धैर्य के साथ, बिना किसी निर्णय पे पहुंचे और बिना कोई निष्कर्ष निकाले, बिना उसकी गलतियों को गिनते हुए उसकी मन की गांठों को खुलने का अवसर देना चाहिए।

0: आई मिलन की बेला। इस फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को सुन रहे थे।
1: श्रुति जी, बहुत देर से देख रही हूँ, बहुत खराश लग रही है मुझे आपके गले में।
0: जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा गला खराब है, गला ठीक ही नहीं होने को आ रहा राधा।
1: बिल्कुल, और हमारा हम आगे अपने घर आंगन में यही विषय लेकर आए हैं अपने महिलाओं के लिए, अपने श्रोताओं के लिए।
0: मुझे देख रही है तुमने।
1: बिल्कुल, क्योंकि मौसम बदलते ही सर्दी, जुकाम और गले की तकलीफें आम हो जाती हैं। लेकिन यदि गले में खराश, सूखी खांसी या दर्द लंबे समय तक बना रहे तो इसे सामान्य मौसमी परेशानी समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और आज हम इसी बात पे बात करेंगे, ठीक नहीं हो रहा है क्यों गला।
0: देखो, गले में खराश के कई कारण हो सकते हैं। वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण हो सकता है, टॉन्सिल की सूजन हो सकती है, एलर्जी, धूल और प्रदूषण हो सकता है, धूम्रपान हो सकता है, और बहुत अधिक ठंडी या बहुत अधिक गर्म चीजों का अगर हम सेवन करते हैं, यहाँ तक कि एसिडिटी भी अगर होती है ना, तो गले में जलन और दर्द का कारण बन सकती है। और आमतौर पे ये जो वायरल संक्रमण है ना, कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, पर मेरा भी जैसे नहीं हुआ। लेकिन यदि गले में दर्द लगातार बना रहे, तेज बुखार आए, निगलने में कठिनाई हो, आवाज बैठ जाए या गले में सूजन बढ़ती जाए, तो बिना देर किए डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं श्रुति, क्योंकि एक बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो है बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक दवाई लेना। याद रखिए, हर गले का संक्रमण बैक्टीरिया नहीं होता है। वायरल संक्रमण में एंटीबायोटिक दवाएं असर नहीं करती हैं। इसका अनावश्यक उपयोग भविष्य में दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसी गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। अगर गले में हल्की खराश है तो कुछ घरेलू उपाय राहत दे सकते हैं। दिन में 2-3 बार गुनगुने पानी में आप नमक डालकर गरारे कर सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में बहुत सारा पानी पिए, गर्म सूप, हर्बल चाय लें, धूल और धुएं से बचें और आवाज को आराम दें।
0: और देखो, यदि आप लोग धूम्रपान करते हैं तो ये आदत गले की परेशानी को और बढ़ा सकती है। धूम्रपान न केवल गले को नुकसान पहुंचाता है बल्कि कई गंभीर बीमारियों को भी जन्म देता है। तो श्रोताओं, हमारा गला हमारी आवाज का आधार है, इसीलिए इसकी देखभाल भी उतनी ही जरूरी है। सही इलाज, संतुलित आहार, पर्याप्त आराम और डॉक्टर की सलाह का पालन करके आप गले के अधिकांश समस्याओं से जल्दी ही राहत पा सकते हैं।
1: तो अगली बार यदि आपका गला लंबे समय तक ठीक ना हो तो खुद से इलाज करने की बजाय विशेषज्ञ की सलाह लें। स्वस्थ रहिए और अपनी आवाज का खास ख्याल रखिए।
0: और देखो राधा, अगर ये देखो मौसम ऐसा है ना, अगर गला ठीक होगा तो हम गाने गा भी सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: लिख भी सकते हैं। और देखो क्या है कि ये जो सावन का मौसम है ना, इसमें गानों को रचा भी जाता है, गढ़ा जाता है और उनको अपनी भावनाओं का आकार दिया जाता है।
1: बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ कि आप कौन सा गीत सुनवाने वाली हैं।

0: सावन को आने दो। इस फिल्म में अभी आपने जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा को सुना, और जो श्रुति जी आपने सवाल पूछा था उसकी मैं देख रही हूँ कि आपने मेल खोल रखी है, जवाब आने शुरू हो गए हैं। तो एक मेल तो मैं पढ़ देती हूँ, मेरे पास है ये भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से लिखते हैं कृष्ण कुमार गुप्ता। ये लिखते हैं कि बात 2000 सन की है, 2001 की, जब मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, मुझे हड्डी से संबंधित बीमारी हो गई थी। असहनीय दर्द के कारण बहुत बार रोना आता था, लेकिन मेरी माँ ने बड़ी दीदी के पास इसकी खबर पहुँचा दी। दीदी ने बिना समय गवाए फोर व्हीलर भेजकर इलाज के लिए कानपुर मुझे बुला लिया और मशहूर हड्डी रोग विशेषज्ञ से मेरा इलाज चला। हम लोग शाकाहारी हैं, लेकिन डॉक्टर के कहने पर मेरी पत्नी और माँ अंडा भी नहीं छूते थे। उन्होंने मेरे जीवन के लिए सब कुछ किया। अब मेरी माँ बड़ी दीदी संसार में नहीं है, लेकिन उनके चरणों में सादर चरण स्पर्श और सादर नमन। मतलब ये कहना चाहते हैं कि परिवार वाले जो भी बेस्ट हो सकता है वो हमेशा साथ होते हैं।
1: और देखो एक ऐसी ही मेल मेरे पास भी आई है। ये मेल लिखने वाले हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, ये शांति नगर सोनीपत से लिख रहे हैं और बहुत अच्छी बात लिखी है इन्होंने। ये कहते हैं कि अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते
0: बहुत
1: हैं।
0: बहुत ही सुंदर विचार इन्होंने लिखा है।
1: बिल्कुल। और देखो इन्हीं विचारों के चलते चलते ऐसा ना हो कि हम अपनी बातों को कहना भूल जाए, तो देखो जैसे अभी हमने मोबाइल से मेल पढ़ी ना, तो वैसे ही सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल में हाथ आता है और मोबाइल हाथ में आ जाता है और परिवार के ग्रुप में कोई संदेश पर निगाह पड़ जाए, बस उंगलियां बिना सोचे समझे उसे आगे भेज देती हैं। और ये सोचकर कि अगर खतरे की बात है तो सबको पता चल जानी चाहिए। कई बार यही जल्दबाजी जो होती है ना, हमें बिना जाने अफवाह फैलाने वाला बना देती है, क्योंकि जो संदेश हमें मिलता है वो कई हाथों से गुजर कर आता है और हर हाथ में थोड़ी तोड़ मरोड़ हो चुकी होती है। इसलिए संदेश के ऊपर बना फॉरवर्ड का जो निशान होता है ना, वो हमें ये बताता है कि ये किसी और ने भेजा है। और अगर दो तीर का निशान बना हुआ है तो पता है क्या समझना चाहिए, कि संदेश बहुत बार आगे बढ़ चुका है।
0: ये तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जानकारी वाली बात आपने हमारे श्रोताओं को बताई, क्योंकि आजकल तो नकली आवाजें और नकली चेहरे बनाकर फर्जी वीडियो तक बनाए जा रहे हैं, जिन्हें असली से अलग पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सरकार की फैक्ट्स चेक यूनिट PIB किसी भी संदिग्ध संदेश की सच्चाई जांचने में मदद करती है। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर 7879971259 पर, मैं नंबर फिर से बता देती हूँ, व्हाट्सएप नंबर 8799711259 पर संदेश भेजा जा सकता है या factcheck.pib.gov.in पर जांचा जा सकता है। इसलिए अगली बार कोई चौंकाने वाला संदेश मिले तो पहले देखिए कि क्या ये विश्वसनीय स्रोत से आया है, और अगर

0: जरा सा भी संदेह हो तो उसे वहीं रोक दीजिए, क्योंकि एक झूठ को फैलने से रोकना भी उतना ही बड़ा काम है, सतर्क रहना भी अपनों की सबसे बड़ी हिफाजत है।
1: बिल्कुल ठीक कहा तुमने राधा।

0: आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में।
1: और देखो राधा, हमें लगातार मेल्स मिल रही हैं और ये मेल हमारे पास आई है वैशाली से। रश्मि कपूरिया ने लिखी है, ये कहती है कि मेरी मम्मी हमेशा मुझे सही शिक्षा देती हैं, वो भगवान में बहुत भरोसा करती हैं और यही कहती हैं कि सब समय ठीक हो जाएगा। और बहुत अच्छी बात है, माएं हमेशा बच्चों की बहुत चिंता करती हैं और हमेशा सही सही बात बताती हैं।
0: हम रश्मि कपूरिया जी से यही कहेंगे कि बिल्कुल उनकी मम्मी ने सही कहा, और सभी श्रोताओं से भी यही कहेंगे कि समय सब सही करेगा, ये बिल्कुल सही बात है।
1: देखो लेकिन एक मेल हमें और आई है कल्पना शुक्ला की, और ये तो हमारी साथी भी है और ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। ये कह रही

0: परिवार तो हर परिस्थिति में साथ देता ही है, लेकिन हर बात हम परिवार से तो नहीं कर पाते हैं, तो कुछ हमारा निजी भी तो होता है ना। तो ये कह रही है कि उसको मैं कविता और कहानी के माध्यम से गीतों में कह देती हूँ, बहुत सुकून मिलता है। बहुत अच्छी बात कही कल्पना तुमने, और ये बिल्कुल सही बात है कि हम जब किसी से बात नहीं कह पाते तो इसीलिए डॉक्टर्स भी कई बार कहते हैं कि डायरी लिखो, है ना।
1: बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारा जो परिवार है ना, मैंने देखा ज्यादातर जो मेल आई है उसमें यही लिखा है कि परिवार ने और दोस्तों ने साथ दिया, तो मैक्सिमम यही होता है कि या तो परिवार वाले या दोस्त आपके साथ हमेशा हर तकलीफ में आपके साथ खड़े होते हैं।
0: और एक और मेल आई है हमारे पास, ये हैं उग्रसेन यादव जी, ये भी हमें नियमित मेल लिखते हैं। ये कह रहे हैं कि आप दोनों को मेरा नमस्कार, जब भी कठिन दौर आया तो मेरे माता पिता ने बिल्कुल हमेशा हमें हिम्मत दी, हमारा साथ निभाया, ये मेरे लिए मेरे हीरो हैं। तो सही बात है, बिल्कुल माता पिता तो हीरो होते ही हैं।

0: आपने लिया है फिल्म पाकीज़ा से आपने हाँ, गीत सुनवाया बिल्कुल लता मंगेशकर की आवाज में।
1: और जानती हो इस गीत में जो अभिनेत्री है वो कौन?
0: मीना कुमारी जी। आज उनका जन्म दिवस है। बिल्कुल मैं समझ गई श्रुति जी, इसीलिए आपने ये गीत सुनाया उनकी इस मशहूर फिल्म से।
1: और उन्होंने बहुत सारी यादगार भूमिकाएं भी निभाई हैं और ये पाकिजा उनमें से एक
0: है। बिल्कुल उन्हें भारतीय सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन भी कहा जाता
1: है। और चलते चलते मैं एक बात कहना चाहूंगी कि राधा, ये जो हमने मेल पढ़ा था उग्रसेन यादव जी का, इनकी मेल अधूरी पढ़ पाए थे हम, तो इन्होंने आगे लिखा है कि समय के साथ साथ मेरे दोस्तों ने भी कठिन समय में मेरा साथ निभाया और हम भी उनके कठिन समय में काम आते हैं।

0: उस समय हमसे कह रहा है कि हम अपना बोरी विस्तार समेटे इस कार्यक्रम से।
1: बिल्कुल बहुत अच्छा लगा श्रुति जी, और हम घर आंगन के सभी श्रोताओं से कहते हैं स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने परिवार दोस्तों के साथ घुलते मिलते रहिए।
0: तो मुझे श्रुति पुरी को
1: और मुझे राधा पाठक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आंध्र प्रदेश में हैं और वे भोगमरमपुरम में सभा को संबोधित कर रहे हैं, तो आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: ऊंची आसमान को सुने वाली व्यवस्था एयरपोर्ट का निर्माण और दूसरी तरफ मेरे यहां के आदिवासी बहनों के द्वारा भीमसा नृत्य का विश्व रिकॉर्ड बनाना, मैं चंद्रबाबू के इस विजन को विशेष रूप से सराहना करता हूं।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने यात्री टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री ने 13,500 से अधिक आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक थिमसा नृत्य प्रस्तुति देखी, जो उत्तरी आंध्र की जीवंत आदिवासी संस्कृति को दर्शाती है। श्री मोदी आज राज्य में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम कर दी हैं। कटौती के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत 2,738 रुपये हो गई है। वहीं कोलकाता में 2,872 रुपये 50 पैसे, मुंबई में 2,691 रुपये 50 पैसे और चेन्नई में 2,906 रुपये हो गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू जीएसटी राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपए रहा। ये एक वर्ष पहले की तुलना में 10.1% अधिक है। तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें बूथ स्तर के अधिकारी 10 अगस्त तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा अब 17 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 17 अगस्त से 16 सितंबर तक जारी रहेंगी, जबकि उनका निपटान 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई, जिससे मृतकों की संख्या 2 हो गई है। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन 2 श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता भी दी जाएगी।

0: He has said that rainfall over the country is likely to be below normal during the second half of the southwest monsoon season. The IMD said rainfall is expected to be less than 94% of the long period average in this month. The weather agency added that these conditions are expected not to prevail over many areas of eastern peninsular India, some areas of northwest, central India, and isolated areas of east and northeast India. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त सुनिधि। और अगले आधे घंटे तक हम साथ रहेंगे सुनहरे दौर के ऐसे संगीत के सफर पर जिसकी हर धुन आज भी उतनी ही ताजा और दिलकश लगती है। कार्यक्रम है एक ही फिल्म से और आज की हमारी महफिल सजी है वर्ष 1951 की सदाबहार फिल्म अलबेला के नाम। दोस्तों, भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो केवल अपनी कहानी की वजह से नहीं बल्कि अपने संगीत, अपने अंदाज और अपनी अलग पहचान के कारण हमें हमेशा याद रह जाती हैं। अलबेला उन्हीं फिल्मों में से एक है। इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन अभिनेता भगवान दादा ने किया था। मुख्य भूमिकाओं में भगवान दादा और गीता बाली नजर आए। संगीत दिया था सी रामचंद्र ने और गीत लिखे थे राजेंद्र कृष्ण ने। यह वही टीम थी जिसने अलबेला को एक ऐसी संगीत में सौगात बना दिया जिसकी धुनें आज भी उतनी ही लोकप्रिय हैं। तो दोस्तों, हम बात करते रहेंगे फिल्म अलबेला की। तो फिल्म की शुरुआत करते हैं, इस कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं इस फिल्म के एक बहुत ही शानदार और बहुत ही प्रख्यात गीत के साथ।

तो दोस्तों अभी आपने सुना शोला जो भड़के फिल्म अलबेला से, ये गीत लता मंगेशकर और चितलकर की आवाज में, जो कि आज भी संगीत प्रेमियों की जुबान पर है और इसे सुनते ही कदम अपने आप थिरकने लगते हैं। तो हम फिल्म की बात कर रहे हैं अलबेला। तो अगर हम फिल्म की बात करें दोस्तों, तो ये एक साधारण लेकिन बहुत ही भावनात्मक युवक प्यारे लाल की कहानी है, जो अपने परिवार की जिम्मेदारियों के बीच अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। परिस्थितियां उसे रंगमंच और मनोरंजन की दुनिया तक ले जाती हैं, जहां उसकी मुलाकात एक चुलबुली और जीवंत युवती से होती है। संघर्ष, प्रेम, हास्य, गलतफहमियां और अंततः सफलता, इन सभी रंगों से सजी ये कहानी दर्शकों के दिलों को छू जाती है। यही सादगी इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन सच कहें तो अलबेला की सबसे बड़ी पहचान उसकी कहानी से कहीं ज्यादा उसका संगीत बन गया। उस दौर में जब ये फिल्म बनी तो फिल्मी संगीत मुख्यतः पारंपरिक शैली में रचा जाता था। तब संगीतकार सी रामचंद्र ने भारतीय धुनों में लैटिन अमेरिकी और पश्चिमी वाद्य यंत्रों की झलक मिलाकर एक ऐसा नया प्रयोग किया। यही कारण है कि इस फिल्म के गीत सुनते ही मन अपने आप थिरकने लगता है। इस फिल्म का लगभग हर गीत अपने आप में एक अलग रंग लिए हुए है। तो हम बात करते रहेंगे इस फिल्म की और इस फिल्म के गीतों की, इस फिल्म के तथ्यों की। तो आइए अब चलते हैं इस फिल्म का एक और बहुत ही खूबसूरत सा गाना सुनने के लिए।

दोस्तों, अलबेला फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर है। ये फिल्म न केवल अपनी म्यूजिकल कॉमेडी के लिए बल्कि पर्दे के पीछे के संघर्ष और अनूठे डांस स्टाइल के लिए भी याद की जाती है। फिल्म की कहानी प्यारे लाल यानी कि भगवान दादा के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गरीब और साधारण सा इंसान है। प्यारे लाल का सपना एक बड़ी स्टेज का कलाकार बनने का है, लेकिन उसके पिता उससे नाराज रहते हैं क्योंकि वह नौकरी गंवा चुका होता है और अपनी बहन विमला की शादी के लिए उसके पास पैसे नहीं होते और उन्हें पैसे जुटाने होते हैं। तो ये बात हमारी चलती रहेगी फिल्म अलबेला की। तो आइए हम सुन लेते हैं इस फिल्म का एक और बड़ा ही प्यारा सा नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुनिधि। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं अपने फिल्म अलबेला के मुख्य किरदार प्यारे लाल की। तो आर्थिक मदद के लिए प्यारे लाल निराश होकर घर छोड़ देता है, किस्मत आजमाने थिएटर की दुनिया में चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात उस दौर की मशहूर ड्रामा स्टार आशा यानी कि गीता बाली से होती है। अब आशा उसकी प्रतिभा को पहचानती है और उसकी मदद करती है। धीरे धीरे प्यारे लाल एक बड़ा स्टार बन जाता है और दोनों में प्यार हो जाता है। दोस्तों इस फिल्म से जुड़े कुछ रोचक तथ्य भी हैं जो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। भगवान दादा ने इस फिल्म में बहुत ही सहज और धीमी गति से हाथ पैर हिलाने वाला एक अनोखा डांस स्टेप पेश किया। बाद में इसी स्टाइल को अमिताभ बच्चन ने अपनी फिल्मों में जैसे नमक हलाल में और संजय दत्त ने भी कॉपी किया। शुरुआत में गीता बाली ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था क्योंकि फिल्म में राज कपूर या देव आनंद जैसे उस दौर के बड़े स्टार्स नहीं थे। हालांकि बाद में वह भगवान दादा के अभिनय और कहानी से बहुत प्रभावित होकर मान गई।

दोस्तों, इस फिल्म में भावुक मोड़ तब आता है जब सफलता मिलने के बाद प्यारे लाल अपने परिवार के लिए नियमित रूप से पैसे और तोहफे भेजता है। लेकिन जब वह सालों बाद खुद घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ का निधन हो चुका है, उसके भेजे पैसे गायब हैं और उसके पिता और बहन सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर हैं। इसके बाद कहानी इन पारिवारिक रिश्तों को सुधारने पर केंद्रित हो जाती है। तो दोस्तों, इस फिल्म की बात करते रहेंगे। इस फिल्म का नाम ही अलबेला है और इस फिल्म की कहानी भी अलबेली है, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं आपके साथ। तो आइए अब सुन लेते हैं इस फिल्म का एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिल्म अलबेला की। इसके बारे में एक और आपको खास बात बता दें कि भगवान दादा ने इस फिल्म को बनाने के लिए अपनी सारी संपत्ति और घर तक डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास गिरवी रख दिया था। फिल्म के सुपरहिट होने के बाद वो रातों रात बेहद अमीर हो गए और उन्होंने जुहू में एक आलीशान बंगला भी खरीदा और कई गाड़ियां खरीदी। तो दोस्तों, आज हमने बात की फिल्म अलबेला की अलबेली बातों के साथ। तो अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे यानी कि अपनी दोस्त सुनिधि को दीजिए इजाजत और अगले कार्यक्रम में आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई फिल्म के साथ, एक नई कहानी के साथ। तो चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इस अलबेला फिल्म के एक और गाने के साथ। सुनिए।

0: युद्ध हो गई है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने दस्सिया कि जख्मी मजदूर की श्रीनगर के एक अस्पताल विच इलाज दौरान मौत हुई। कल शाम अणपछाते दहशतगर्दा ने इटा के पट्ठे से काम करने वाले दो मजदूरों से गोलीबारी की थी। घटना तो तुरंत बाद इलाके नूं घेर लिया गया ते दहशतगर्दा का पता लाने लई एक विशाल तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ते मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मजदूरों की हत्या की सख्त निखेधी की है। मृतकों के परिवारों नाल हमदर्दी जताई है। उपराज्यपाल ने सुरक्षा बलों नूं हमले विच शामिल दहशतगर्दा नूं खत्म करने लई खेतर विच कार्रवाईयां तेज करने के निर्देश दिते ने। मुख्यमंत्री ने मृतकों के नेड़ले रिश्तेदारों लई मुख्यमंत्री राहत फंड विचों 10-10 लाख रुपए की राहत रकम का ऐलान किया है। इस तों इलावा कुलगाम जिला प्रशासन वालों 6-6 लाख रुपए की तुरंत सहायता प्रदान की जाएगी। एक खबर तुसी आकाशवाणी तों सुन रहे हो, साडा एक्सएनडले @EIRR न्यूज़ जलंधर। भारत ते चीन विचकार सरहदी व्यापार अज सिक्किम दे नाथुला दर्रे राही मुड़ शुरू हो रहा है। ए दोवां गुआंढी देशां विचकार एक अहम व्यापारक रस्ते दी मुड़ सुरजीती नूं दर्शांदा है। कोविड कारण 2020 तों 6 सालां दी मुअत्तली तों बाद ई व्यापार मुड़ शुरू हो रहा है। इस नाल सरहद पार व्यापार नूं हुलारा मिलण दी उम्मीद है, जिस नाल रजिस्टर्ड व्यापारियां, ट्रांसपोर्ट आपरेटरां अते संबंधित कारोबारां नूं फायदा होएगा। 4 दहाकियां तों वध समें लई मुअत्तल रहण तों बाद नाथुला राही व्यापार 2006 मुड़ शुरू होया सी। तेल मार्केटिंग कंपनियां ने अज 19 किलोग्राम वाले व्यापारक एलपीजी सिलेंडर की कीमत करीब 200 रुपए प्रति सिलेंडर घटा दी है। इस कटौती तो बाद दिल्ली विच व्यापारक सिलेंडर की कीमत 2738 रुपए हो गई है। कोलकाता विच इसकी कीमत 2872.50 रुपए, मुंबई विच 2691.50 रुपए और चेन्नई विच 2906 रुपए हो गई है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड मुताबिक नवियां व्यापारक सिलेंडर दियां कीमतां अज तों लागू हो गई ने। इस फैसले नाल रेस्टोरेंटां, ढाबियां, होटलां ते खाण पीण दे कारोबार नाल जुड़े लोकां नूं राहत मिलेगी। पिछले महीने वस्तु ते सेवा टैक्स GST संग्रह विच 2,11,205 करोड़ रुपए का अहम वाधा होया, जो कि जुलाई 2025 विच 1,83,065 करोड़ रुपए तों साल दर साल 15.4% वाधा है। खजाना मंत्रालय वालों जारी किए गए आरसी अंकड़िया मुताबिक कुल घरेलू GST मालिया 1,44,695 करोड़ रुपया, जो कि एक साल पहला नालों 10.1% वाधे। दरामदा तो GST वसूली 28.8% वाधे 6,511 करोड़ रुपए हो गई है, जिस नाल कुल मासिक वसूली नूं हुलारा मिलिया है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान, बिहार और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की पेशीनगोई की है। इसने पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, साहिली कर्नाटका, दक्षिणी अंदरूनी कर्नाटका, कोंकण, गोवा, केरल ते माहे विच भारी तो बेहद भारी बारिश होने की संभावना भी जताई है। जम्मू कश्मीर विच अज सवेरे किश्तवाड़ जिले के चतरू इलाके विच बदल फटन कारण आए अचानक हाड़ा ने तबाही मचाई, जिस कारण कई स्कूल बंद करने पे। साडे पत्रकार ने खबर दिती है कि लगातार मीह ने चुनाव वादी विच आम जीवन नूं प्रभावित किया है, जिस कारण अधिकारियों ने किश्तवाड़, डोडा ते रामबन जिले विच स्कूल बंद कर दिते ने। किश्तवाड़ जिले के चतरू इलाके विच सड़क 2:30 बजे बदल फटन नाल अचानक हड़ आ गए, जिस कारण व्यापक नुकसान होया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बदल फटन की जानकारी मिलने तो तुरंत बाद किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर पंकज कुमार शर्मा नाल गलबात की थी। मंत्री ने कहा कि इस घटना विच किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेडां विच भारत की शानदार कारगुजारी जारी है। भारत ने कल जूडो विच 2 सोने के तमगे जीते। मर्दां दे जैवलिन थ्रो विच इतिहासक दोहरी जित हासिल की। डेकेथलोन विच अपना पहला कांसी का तमगा हासिल किया ते 10 भारतीय मुक्केबाज अपने अपने मुकाबलियां दे फाइनल विच पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे तमगा जेतुआं नूं वधाई दित्ती है। ताइपे ओपन बैडमिंटन विच भारत दी तन्वी शर्मा ने सेमीफाइनल विच शानदार जीत नाल औरतां दे सिंगल्स दे फाइनल विच थां बना ली है। आखिर च खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश विच अलूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने समुद्री फौज के उपमुखी वजों अहुदा संभाल लिया है। जम्मू कश्मीर विच कुलगाम जिले के केलम इलाके विच इट्टां दे पट्ठे ते अणपछाते दहशतगर्दां वल्लों हमला, 2 मजदूरां दी मौत। भारत ते चीन विचकार सरहदी व्यापार अज सिक्किम दे नाथुला दर्रे राही मुड़ शुरू हो रहा है। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन शाम 6:20 हो।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार।

0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम के भोगपुरम में ग्रीन फील्ड एलूरी सीताराम राजू बैन अलावामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह किया। वजीर आजम ने बुनियादी ढांचे और तवानाई के शोबों में 18,000 करोड़ रुपए की मालियत के प्रोजेक्टों का आगाज किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में दहशतगर्दाना हमले में जख्मी होने वाला दूसरा मजदूर भी जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में तकरीबन 200 रुपए की कमी कर दी है। ओडिशा में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन है। महानदी दरिया में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से नशेबी इलाकों में मजीद सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम के भोगपुरम में ग्रीन फील्ड एलूरी सीताराम राजू बैन अलावामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह किया। उन्होंने तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए मालियत के अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ किया, इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर एक इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिए गए हैं जिनमें सड़कें और तवानाई की यकीनी फराहमी शामिल है। इससे आंध्र प्रदेश की तेज तरक्की में तरक्की होगी।
1: आज यहां करीब 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: नए हवाई अड्डे की अहमियत को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि ये फख्र की बात है कि यह हवाई अड्डा एलूरी सीताराम राजू के नाम पर रखा गया है और इस हवाई अड्डे का इफ्तिताह ऐसी सरजमीन पर किया गया है जहां मुजाहिद आजादी ने कबायली तबकात के हकूक के लिए लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान की थी। उन्होंने कहा कि यह हवाई अड्डा आंध्र प्रदेश खसूसन शिमाली आंध्र प्रदेश की तरक्की के लिए मददगार साबित होगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पब्लिक इम्तिहान में गलत तौर तरीकों के की रोकथाम से मुतालिक बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। इस बिल को पार्लियामेंट में जुमेरात को मंजूरी दी गई थी। इस कानून का मकसद सख्त सजाएं मुकर्रर करके और तेजी से काम करने वाली अदालतें कायम करके गलत तौर तरीकों की रोकथाम करना है। इस बिल में इम्तिहान के निजाम में एक कानूनी फ्रेमवर्क के जरिए शफाफ और सही तौर तरीकों और दयानतदारी की बात कही गई है ताकि बच्चों के मुस्तकबिल का तहफ्फुज़ किया जा सके। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले के केलम इलाके में कल शाम दहशतगर्दाना हमले के दौरान जो दूसरा मजदूर जख्मी हुआ था वो भी आज सुबह जख्मों की ताब ना लाकर चल बसा। इस तरह मरने वालों की तादाद बढ़कर 2 हो गई है। पुलिस के एक सीनियर अहलकार ने बताया कि जख्मी मजदूर श्रीनगर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दोनों मजदूरों पर कल शाम नामालूम दहशतगर्दों ने फायरिंग की थी जो ईंटों के एक भट्टे पर काम कर रहे थे। इस वाकये के फौरन बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई और दहशतगर्दों को तलाश करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मजदूरों की हलाकत की सख्त मजम्मत की है और मारे गए मजदूरों के कुंभों के तई ताजियत का इजहार किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सिक्योरिटी फोर्सेस को हिदायत दी है कि वो इस हमले में मुलविस दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए इलाके में अपनी कार्रवाई और तेज करें। जनाब अब्दुल्ला ने मरने वाले मजदूरों के कुंभों के लिए वजीर आला के राहती फंड से 10-10 लाख रुपए की माली मदद का ऐलान किया है। इसके अलावा कुलगाम जिला इंतजामिया की तरफ से फौरी तौर पर 6 लाख रुपए की इमदाद फराहम की जाएगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में तकरीबन 200 रुपए की कमी कर दी। कीमत में कमी के बाद दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 2,738 रुपए होगी। इसी तरह कोलकाता में 19 किलोग्राम कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2,872 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 2,691 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2,906 रुपए होगी। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की नई कीमत का इतलाक आज से हो गया है। इस फैसले से ढाबों, होटलों और खुराक मशहूर

0: The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Greenfield Alluri Sitarama Raju International Airport at Bhogapuram in Vijayanagaram district of Andhra Pradesh. Prime Minister launches projects worth 18,000 crore rupees in infrastructure and energy sectors. In Jammu and Kashmir, second labourer injured in yesterday's terrorist attack in Kulgam succumbs to injuries. Price of 19 kilogram commercial LPG cylinder reduced by about 200 rupees. Flood situation remains critical in Odisha with Mahanadi River continuing to swell, threatening fresh areas. And in Taipei Open Badminton, Tanvi Sharma storms into women's singles finals. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said, Andhra Pradesh is moving ahead at a rapid pace and that the centre is fully committed to realising the vision of Swarn Andhra and Viksit Bharat through large-scale infrastructure and industrial development. Addressing a public meeting after inaugurating the Alluri Sitarama Raju International Airport at Bhogapuram, the Prime Minister said, development projects worth about 18,000 crore rupees, including airport, road and energy infrastructure, reflect the state's fast-paced progress under the NDA governments at the centre and in the state.
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीस की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है. एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं. इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं. ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है.
0: Mr. Modi described the new airport as the runway for the growth of Andhra Pradesh, particularly North Andhra, and a launchpad for the aspirations of the state's youth. He announced that the airport has been named after freedom fighter Alluri Sitarama Raju, saying the name would inspire future generations with the spirit of patriotism and public service.
1: NDA सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं. 12 ईयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है. हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है. इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की. कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की. इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे.
0: Mr. Modi said the centre is transforming Andhra Pradesh into a major growth engine through ports, highways, railways and logistics under the PM Gati Shakti National Master Plan. He said railway projects worth nearly 1 lakh crore rupees are under implementation, while more than 70 railway stations are being modernised. The Prime Minister expressed confidence that under the leadership of Chief Minister N. Chandrababu Naidu, Andhra Pradesh would play a major role in achieving the goal of Viksit Bharat 2047.
1: मुझे पूरा विश्वास है आज यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, जिनकी नींव रखी गई है, वो सारे प्रोजेक्ट स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे. आंध्र प्रदेश विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा स्रोत बन रहा है. मैं एक बार फिर इन सभी परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ.
0: आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू प्रेज्ड प्राइम मिनिस्टर मोदीज लीडरशिप फॉर हेल्पिंग रीबिल्ड आंध्र प्रदेश एंड ट्रांसफॉर्म नॉर्थ आंध्रा. He said the inauguration of the Alluri Sitarama Raju International Airport at Bhogapuram was a historic milestone that would bring investment, industries, jobs and new opportunities to the region. Indian Railways has approved the multi-tracking of the 29-kilometre Danapur to Fatuha section of East Central Railway at a cost of 976 crore rupees. The Railway Ministry said the project will decongest one of the busiest stretches on the Patna Rail Corridor and create room for a large increase in both passenger and freight services. The ministry said that in the first year of operation, the project will allow 22 additional passenger trains and 18 additional freight trains every day. In Jammu and Kashmir, the second labourer injured

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की भी मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। ओडिशा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना और औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आधार और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने भोगपुरम में आज अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: आज यहां करीब 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत में विमानन क्षेत्र के तेजी से होते विस्तार का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 166 हो गई है और उड़ान योजना ने आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बना दिया है।
1: एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने इस हवाई अड्डे के उद्घाटन को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के विकास में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फी थिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें लगभग 200 रुपए कम कर दी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी।
3: वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम होने के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर का मूल्य अब 2,738 रुपए हो गया है। वहीं कोलकाता में अब वाणिज्यिक सिलेंडर 2,872 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 2,691 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2,906 रुपए में मिलेगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू जीएसटी राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपए रहा। ये एक वर्ष पहले की तुलना में 10.1% अधिक है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई, इससे मृतकों की संख्या 2 हो गई है। एक रिपोर्ट।
4: वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल श्रमिक की मौत श्रीनगर के एक अस्पताल में चिकित्सा के दौरान हुई। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन दो श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए तलाश अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मजदूरों की हत्या की कड़ी निंदा की और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता भी दी जाएगी। श्रीनगर से इश्फाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें बूथ स्तर के अधिकारी 10 अगस्त तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा अब 17 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 17 अगस्त से 16 सितंबर तक जारी रहेगी, जबकि उनका निपटान 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उड़ीसा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्वाचन आयोग ने बढ़ाकर इस महीने की 19 तारीख कर दी है। दावों और आपत्तियों के निपटान की समय सीमा भी 17 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। आयोग ने बताया कि उड़ीसा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर इस समय सारणी में संशोधन किया गया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल आज से शुरू हो गया है। पात्र महिलाएं आधिकारिक वेबसाइट dly.delhi.gov.in पर पंजीकरण कर सकती हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने दिल्ली मंत्रिमंडल की इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी, इसका ऐलान किया था। वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस के नशा मुक्त अभियान नशे से दूरी है जरूरी के दूसरे चरण ने 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन सभी 5 उपलब्धियों को मान्यता दी है। इस अभियान ने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इंदौर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने 17 लाख से अधिक लोगों को नशा विरोधी ई शपथ दिलाई और 8,534 प्रतिभागियों की मानव श्रृंखला बनाई। रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के 29 किलोमीटर लंबे दानापुर से फतोहा खंड पर 976 करोड़ रुपए की लागत से एक से अधिक लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस परियोजना से पटना रेल कॉरिडोर के सबसे व्यस्त खंडों में से एक पर भीड़ कम होगी और यात्री और माल ढुलाई सेवाओं में वृद्धि संभव होगी। मंत्रालय ने बताया कि परिचालन के पहले वर्ष में इस परियोजना से प्रतिदिन 22 अतिरिक्त यात्री ट्रेन और 18 अतिरिक्त मालगाड़ी चल सकेंगी। इससे प्रति वर्ष 52 लाख टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी। आयकर विभाग ने बताया है कि वर्ष 2026-27 के लिए 31 जुलाई 2026 तक 59 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। सोशल मीडिया पोस्ट में करदाताओं को धन्यवाद देते हुए विभाग ने कहा कि उनका विश्वास और समय पर अनुपालन ही भारत के विकास को गति देने वाली ऊर्जा प्रदान करता है। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने आज नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। गोवा स्थित नौसेना अकादमी के 38वें एकीकृत कैडेट पाठ्यक्रम के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल एएन प्रमोद जुलाई 1990 में नौसेना में कमीशन हुए थे। 36 वर्ष से अधिक के अपने विशिष्ट करियर में कई पदों पर उन्होंने कार्य किया। दिसंबर 2023 से जुलाई 2026 के बीच नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में वे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना की योजना तैयारी और परिचालन तत्परता में सक्रिय रूप से शामिल रहे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इससे राज्य में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने राज्य में अधिक बारिश का अनुमान व्यक्त किया है।
5: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है क्योंकि महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा और खुर्दा जिलों के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आने की खतरा पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर और केंदुझर जैसे बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके।

0: और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। भद्रक में कई गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, सड़कों का संपर्क टूट गया है और संचार व्यवस्था बुरी तरह बाधित है, जिससे हजारों लोग भोजन, पीने का पानी और जरूरी सामान के लिए जूझ रहे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, केरलम और माही में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिन बिजली गिरने की स्थिति बनी रहेगी। राजधानी दिल्ली में आज शाम कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने आज सेमीफाइनल में शानदार जीत के साथ महिला सिंगल्स के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। 17 वर्षीय तन्वी ने चीनी ताइपे की हुआंग यू हुसून को सीधे गेम में हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। फाइनल में अब तन्वी का मुकाबला वियतनाम की थुई लिन्ह गुएन से होगा। उन्नति हुडा सेमीफाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। उधर ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के पास कई पदक जीतने के मौके हैं। बॉक्सिंग में ओलंपिक पदक विजेता लवलीना गोहन की अगुवाई में 10 मुक्केबाज फाइनल मुकाबले खेलेंगे। अस्मिता डे और हर्ष सिंह के कल जूडो में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने के बाद जूडो खिलाड़ी भी मैदान में उतरेंगे। लॉन बाउल्स में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार की पुरुष डबल्स जोड़ी इंग्लैंड के खिलाफ महत्वपूर्ण मैच खेलेगी, विजेता सेमीफाइनल में पहुंचेगा। खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स और ट्रैक साइकिलिंग में भी पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति बढ़ती जा रही है। पिछले 4 दिनों में पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने आरोप लगाया कि इन मौतों के लिए सुरक्षा बल जिम्मेदार हैं। एक और बयान में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि मुजफ्फराबाद इलाके में देर रात तक विरोध प्रदर्शन जारी रहे। लोग अपने बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा और स्थानीय अधिकारों द्वारा किए गए वायदों को पूरा करने की मांग को लेकर सड़कों पर डटे रहे। इस बीच अमरीका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने निहत्ते प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग की निंदा की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से कार्रवाई रोकने, मोबाइल संचार सेवाएं बहाल करने और बल के किसी भी गैर कानूनी इस्तेमाल के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार 6 वर्षों से रुका हुआ था। इससे 6 साल से ज्यादा समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। भारत और रवांडा ने आपसी व्यापार को बढ़ाने के अपने संकल्प को दोहराया है। नई दिल्ली में हुई भारत रवांडा संयुक्त व्यापार समिति की बैठक के पहले चरण में दोनों पक्षों ने वस्तुओं और सेवाओं के आपसी व्यापार की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष आपसी व्यापार के दायरे को विविधतापूर्ण बनाने, व्यापारिक संबंधों को आसान बनाने और बाजार तक पहुंच से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने से जुड़ी पहलों पर सहमत हुए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने रात भर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 22 घायल हो गए। यह हमला पूरे यूक्रेन में रूस के बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले के ठीक 2 दिन बाद हुआ है, जिसमें 10 नागरिकों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। उड़ीसा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम एव दोन एफ एम चैनल ही कांगा चस आकाशवाणी करगिल ना जिरिंच्युत वक्स पदरिंगी में तुसुत निस्ना फेत संसुक कस्ता बल्ती प्रोग्राम इंतेसियन मजा तुर गस्कत प्रोग्राम सिर तंकन पिन सिप्त्यासन कलीम

सामिन आपको बता दें, सिर्फ कुछ ही देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर सुनिएगा फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। दिन में 3:30 हम पेश करेंगे मीना कुमारी की शख्सियत और फन के हवाले से एक खसूस फीचर अजीब दास्तां है ये। 4 बजे से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5 बजे हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पज़ीर हो जाएंगी। तो सामिन ये तक मुख्तसर तारुफ हमारे यहाँ से नशर होने वाले उन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्रेडिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हो चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप हबीब रहमान से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम के भोगपुर में ग्रीन फील्ड अल्लूरी सीताराम राजू बैन अवी हवाई अड्डे का इफ्तिताह किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में दहशतगर्दाना हमले में जख्मी होने वाला दूसरा मजदूर भी जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। भारत और चीन के दरमियान सिक्किम में नाथुला दर्रे के जरिए सरहदी तिजारत आज से दोबारा शुरू हो गई है। ओडिशा में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन है। महानदी दरिया में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से नशेबी इलाकों में मजीद सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा खवातीन

0: के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम के भोगपुरम में ग्रीन फील्ड
1: 3:05 हो चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।
0: ये आकाशवाणी है, अब आप हबीब रहमान से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम के भोगपुर में ग्रीन फील्ड अल्लूरी सीताराम राजू बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में दहशतगर्दाना हमले में जख्मी होने वाला दूसरा मजदूर भी जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। भारत और चीन के दरमियान सिक्किम में नाथुला दर्रे के जरिए सरहदी तिजारत आज से दोबारा शुरू हो गई है। ओडिशा में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन है। महानदी दरिया में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से नशेबी इलाकों में मजीद सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम के भोगपुरम में ग्रीन फील्ड

0: 17 साला तन्वी ने चीनी ताइपे के खिलाड़ी हॉन्ग योन सुन को सीधे सेटों में 21-17, 21-11 से शिकस्त दी। अब फाइनल में तन्वी का मुकाबला वियतनाम की आलमी नंबर 21 खिलाड़ी थुई लिन गोइन से होगा। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम के भोगपुरम में ग्रीन फील्ड अल्लूरी सीताराम राजू बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में दहशतगर्दाना हमले में जख्मी होने वाला दूसरा मजदूर भी जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। भारत और चीन के दरमियान सिक्किम में नाथुला दर्रे के जरिए सरहदी तजारत आज से दोबारा शुरू हो गई है। ओडिशा में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन है। महानदी दरिया में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से नशीबी इलाकों में मजीद सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। सामईन, आज के मेरी पसंद प्रोग्राम के नगमे हमने लिए हैं उन फिल्मों से जिनमें मीना कुमारी की अदाकारी का बहुत चर्चा रहा है, बहुत शोहरत रही है। मीना कुमारी, जैसे कि आपको मालूम है कि 1 अगस्त 1933 को बॉम्बे में पैदा हुई थी, उनका नाम महजबी बानू था। 4 साल की उम्र में उन्होंने अदाकारी शुरू की थी और विजय भट्ट की फिल्मों से उन्होंने अपनी अमली जिंदगी का आगाज किया और फिर धीरे धीरे धीरे उनकी अदाकारी के जौहर सब पर खुलते चले गए और उन्हें ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जाना जाने लगा। आज के मेरे पसंद प्रोग्राम के कुछ नगमे हमने उन्हीं की फिल्मों से लिए हैं।

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे मेरी अपनी फिल्म का नगमा। मौसीकार थे सलील चौधरी। मीना कुमारी की अदाकारी से सजी एक और फिल्म का तस्करा किया जाए, वो फिल्म थी साहेब बीबी और गुलाम, जो जितनी कल मकबूल थी उतनी ही आज भी मकबूल है। उसी फिल्म का नगमा समाप्त फरमाइए गीता दत्त की आवाज में, मौसीकार हैं हेमंत कुमार।

0: सुंदर है।
1: ये रंग आप सुन रहे थे आजाद फिल्म का। इस फिल्म में मीना कुमारी के ऑपोजिट थी दिलीप कुमार। इस नगमे में आवाज दी थी लता मंगेशकर और चितलकर ने, नगमा गाए थे राजेंद्र किशन और मौसीकार सी रामचंद्र। और एक और खूबसूरत नगमा मीना कुमारी जी की अदाकारी से सजा जिसमें किशोर कुमार उनके हीरो थे, और नगमे में आवाज भी किशोर कुमार के साथ है शमशाद बेगम की, मौसीकार है वो भी नैयर।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीना कुमारी की शख्सियत और फन के हवाले से अब समाज फरमाइए, ये फीचर अजीब दास्तां है ये।

0: पागल लड़की, बाहर निकाल दो इस मनुष्य को।
1: नहीं आला हजरत, नहीं। अगर रोमन कानून अमीर और गरीब के लिए एक है तो मेरी फरियाद सुनी जाए।
0: रोमन अदालत ने आज तक किसी फरियादी को नाउम्मीद नहीं किया लड़की, लेकिन इस मुबारक मौके पर दखल अंदाज होकर इंसाफ की फरियाद करने का क्या मकसद?
1: आला हजरत, इस मुबारक मौके के गुजर जाने के बाद इंसाफ की गुंजाइश रहेगी और ना कोई जरूरत।
0: इंसाफ? नादान लड़की, जुल्म के कारखाने से इंसाफ की उम्मीद? जहरीले सांप जहर के सिवा कुछ नहीं उगला करते। चल बेटी घर चले, इंसाफ मिल चुका, रोम कानून शुरू हो चुका। खामोश बदज़बान यहूदी, ऐसे मुबारक दिन हमारे खैर गज़ब को न ललका। इंसाफ मांगना है तो इस बार गाय शहनशाही में अदब से काम ले। यहूदन, तेरी फरियाद बेमौका और बेमहल है।

0: क्या तुम वही जीनत हो जिसको हमने इज्जत और मोहब्बत का आसमान पर बिठाना चाहा? क्या तुम वही जीनत हो जिसकी चौखट पर सर झुकाना हमने भाई से फख्र समझा? और आज आज पिछले पैर अंधेरे में तुम नजीरन भाई के कोठे से लाई गई?
1: हाँ नवाब साहब, मैं वही जीनत हूँ। मैं यहाँ कभी ना आती, लेकिन जब सुना कि एक मासूम लड़की की जिंदगी का सवाल है तो रहा ना गया।
0: मगर ये सब हुआ कैसे? तुम सिकंदर मिर्जा की हवेली के बजाय नजीरन बाई के कोठे पर कैसे पहुंच गई?
1: मैं नजीरन बाई के कोठे पर नहीं गई, नजीरन बाई के कोठे ने मुझे पनाह दी, और उस वक्त पनाह दी जब जब सबने मुझसे आंखें फेर ली थी।
0: मगर तुम हमारी इज्जत से क्यों खेल रही? हमें बताओ जीनत, निकाह के बाद डोली इस हवेली में खाली क्यों आई?
1: निकाह के वक्त अगर मैं घर में होती तो खुदा की कसम डोली खाली कर ही आती।
0: हम समझे नहीं,
1: हमारा निकाह नहीं हुआ नवाब साहब। तुम हवेली में जब शादी की रस्में हो रही थी, मैं शाह बाबा की दरगाह में भटक रही थी। यह मेरे तो एक बिजली सी कौंधी, और उसके बाद क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानती। जब होश आया तो मैं नसीरन बाई के कोठे पर थी।
2: धीरे धीरे मीरा कुमारी को फिल्मों के छोटे मोटे रोल मिलने शुरू हो गए। उन्होंने मुतादिद स्टंट फिल्मों में काम किया मगर पहचान न बना सकी। उसी जमाने में हिदायतकार विजय भट्ट एक फिल्म बनाने जा रहे थे जिसमें वो दिलीप साहब को लेना चाहते थे। जब दिलीप कुमार अवेलेबल नहीं हो पाए तो उन्होंने उसे कम बजट की फिल्म में तब्दील कर दिया। ये वही विजय भट्ट थे जिन्होंने मीरा कुमारी को एज चाइल्ड आर्टिस्ट लेदर फेस में पहला मौका दिया था और उनका नाम बेबी मीना रखा था। मीना कुमारी भी विजय भट्ट के पास गई और भट्ट साहब ने उन्हें फिल्म में ले लिया।

0: किस्मत का खेल कि ये फिल्म एक ऐसी कामयाब फिल्म बनी जो कि आज तक लोगों को याद है, और फिल्म का नाम था बैजू बावरा। बैजू बावरा ने मीना कुमारी को कामयाबी की उन बुलंदियों तक पहुंचाया जहां मीना कुमारी के लिए पहुंचना किसी ख्वाब की ताबीर से कम नहीं था, और मीना कुमारी को वो सब कुछ मिला जो वो चाहती थी।
1: तुम चली जाओ भाई।
2: कहाँ जाओ, तुम्हारे बिना आपके पास तक नहीं बुलाएगा मुझे। दुनिया सभी मुझे इस तरह की निगाह से देखेगी जब तुम अपने हाथों से इस मान से।
1: अभी तुम्हारी मां में सिंदूर भरना, तुम्हें विधवा बनाना है।

फिल्म बैजू बावला ने न सिर्फ मीना कुमारी को पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिलवाया बल्कि इस फिल्म में मीना कुमारी को ऐसी शोहरत और पहचान दी जिसकी जगबगाहट से उस जमाने की नामवर अदाकाराएं फीकी पड़ जाया करती थी, जबकि वो भी अपने फन में यकता थी। मीना कुमारी की खूबी ये थी कि उनके अल्फाज, जबान और चेहरे से जो कर्व नुमाया होता था वो उस किरदार की सही माने में अक्कासी करता था। फिल्म बैजू बावला के बाद अगले बरस मीना कुमारी को एक और बड़ी फिल्म मिली जिसके हिदायतकार थे बिमल रॉय। ये फिल्म शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के नॉवेल पर मबनी थी और फिल्म का नाम था परिणीता।

हो जाए कोई नहीं कह सकता। ऐसा ही कुछ अचानक हुआ मीना कुमारी के साथ। कमाल अमरोही साहब जिन्होंने बॉम्बे टाकीज के लिए महल बनाई थी, वो एक और पिक्चर बनाने जा रहे थे। फिल्म का नाम था अनारकली और कमाल अमरोही ने इसका स्क्रिप्ट भी मुकम्मल कर लिया था। उन्होंने अशोक कुमार से कहा कि क्यों ना इस फिल्म में मीना कुमारी को लिया जाए। अशोक कुमार जो बॉम्बे टाकीज के मालिक थे और उन पर पूरा भरोसा करते थे, उन्होंने इकरार कर लिया। कमाल अमरोही मीना कुमारी को साइन करने उनके घर गए। मीना कुमारी ने महल फिल्म देखी थी और वो उन्हें बहुत पसंद भी आई थी, इसलिए वो बेहद खुश हुई और मीना कुमारी इस फिल्म के लिए तैयार हो गई। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। मीना कुमारी एक हादसे का शिकार हो गई और वो अस्पताल में भर्ती हो गई। हादसे में हाथ इतनी बुरी तरह जख्मी हो गया कि कुछ भी कहना मुश्किल था कि हाथ मुकम्मल तौर पर सही होगा भी या नहीं। फिर क्या था, धीरे धीरे मीना जी से फिल्में वापस ली जाने लगी। कहते हैं ना, परेशानी में साया भी साथ छोड़ जाता है।

मीना कुमारी की दो उंगलियां कट चुकी थी और वो अस्पताल में थी। ऐसे में एक साहब उनको जरूर देखने आया करते थे और वो थे कमाल अमरोही। मीना कुमारी पहले से ही कमाल साहब से काफी इंप्रेस थी। रफ्ता रफ्ता मीना कुमारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई और उन्होंने छुपकर कमाल अमरोही साहब से शादी कर ली। मीना कुमारी को फिर से फिल्में मिलना शुरू हो गई। जिया सरहदी की हिदायत में बनी फिल्म फुटपाथ दिलीप कुमार के साथ मीना कुमारी की पहली फिल्म थी। इसके बाद एक और हिट फिल्म आई जिसके गाने भी बहुत मशहूर हुए और वो थी

अमल मित्रा के एक नॉवेल पर मबनी एक फिल्म बनाई थी गुरुदत्त ने। उस फिल्म के हिदायतकार थे अबरार अलवी। फिल्म थी साहेब बीबी और गुलाम। ये फिल्म सुपरहिट हुई। फिल्म साहब बीबी और गुलाम में मीना कुमारी ने छोटी बहू का किरदार इतनी अच्छी तरह निभाया था कि आज भी लोग छोटी बहू को याद करते हैं। फिल्म साहब बीबी और गुलाम को बेहतरीन अदाकारा समेत 4 फिल्मफेयर अवार्ड मिले। यही नहीं, ये फिल्म बर्लिन बैन अल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल के लिए नामजद भी हुई और मीना कुमारी को एक डेलीगेट की हैसियत से भी मुंतखब किया गया। साहब बीबी और गुलाम का इंतखाब ऑस्कर्स के लिए भी हिंदुस्तान की जानिब से एक ऑफिशियल एंट्री के तौर पर किया गया। इस फिल्म के गाने बहुत हिट हुए। नगमा निगार शकील और मौसीकार हेमंत कुमार थे।

मीना कुमारी ने एक दो नहीं बहुत सी हिट फिल्में दी। इन्हीं में से फनी मजुमदार की हिदायत में बनी फिल्म आरती थी, जिसका टाइटल रोल मीना कुमारी ने किया।

अगर हम मीना कुमारी की फिल्मों के नगमों की बात करें तो उनकी फिल्मों के काफी नगमे बेहद हिट हुए। इनमें से एक सुपरहिट फिल्म थी दिल एक मंदिर, जिसके हिदायतकार थे सी.वी. श्रीधर।

0: फैला है जो पहले छाव में बदनामियों का डेरा है। ये कैसी जन्नत है जो चौंक चौंक जाती है। एक इंतजार मजस्म का नाम खामोशी और एहसास बेकरां पे ये सरहद कैसी। दर दीवार कहां रूह की आवारगी के नूर की वादी तलक लम्स का एक सफर तवील। हर एक मोड़ पे बस दो ही नाम मिलते हैं। मौत कह लो जो मोहब्बत नहीं कहने पाओ। मौत कह लो जो मोहब्बत नहीं कहने पाओ।
1: मीना कुमारी ने अपनी कमोबेश 33 बरस के फिल्मी करियर में 92 फिल्में की, जिनमें से हमने खास खास फिल्मों का जिक्र भी किया, लेकिन मीना कुमारी की एक ऐसी भी फिल्म थी जिसका जिक्र किए बगैर मीना कुमारी की कहानी मुकम्मल नहीं हो सकती। ये एक ऐसी फिल्म थी जो न सिर्फ मीना जी की कामयाब तरीन फिल्म है, बल्कि इस फिल्म के गानों के साथ साथ इसके मकाल में भी बहुत हिट हुए।
2: माफ कीजिएगा, आपके कंपार्टमेंट में चला आया था। आपके पांव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। आपका एक हम सफर।
1: ये फिल्म थी पाकीजा। पाकीजा को मुकम्मल होने में लगभग 14 बरस का अरसा लगा। पाकीजा कमाल अमरोही और मीना कुमारी दोनों के लिए इंतहाई अहमियत की हमला।
3: इनका नाम पाकीजा है।

0: शादी हुई थी, मोहब्बत की शादी थी, इट वॉज अ लव अफेयर। दोनों के दोनों और बहुत महान कलाकार थे, अपनी जगह पर कमाल अमरोही कमाल थे, अपनी जगह पर मैं जबीन मीना कुमारी साहिबा बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी। लेकिन जब वो कमाल अमरोही साहब की जिंदगी में दाखिल हुई थी उस वक्त वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस नहीं थी। बहुत कुछ एज अ पर्सन आई वुड से उन्होंने सीखा आफ्टर शी स्टेप्ड इनटू कमाल अमरोही'स लाइफ माय फादर।
1: फिल्म पाकीज़ा 33 हफ्तों तक कामयाबी के साथ चली और उसने सिल्वर जुबली भी मनाई, लेकिन मीना कुमारी अपनी बीमारी के बायस अपने परस्तारों को उदास छोड़कर रुखसत हो गईं और मालिक के हकीकी से जा मिली।
2: तुम शायद हमेशा के लिए अपने आप को भूल चुकी हो और अब मुझे यकीन हो चुका है कि तुम कोई नहीं हो, सिर्फ मेरी तकदीर हो। उधर देखो, सारा आलम तुम्हारे कदमों पर झुका हुआ है और ये सब तुम्हें सलाम कर रही है।
3: लल्ला, चुप हो जाइए, इतने प्यार से मेरी जान मत लीजिए। मैं इकरार किए लेती हूँ, मुझे सब याद है, मैं क्या हूँ, कौन हूँ।
2: कौन हो तुम, कौन हो?
3: मैं बेकसूर हूँ, आपने ये समझाया था, आप आए, आपने खत लिखा और फिर कभी आपने मुझे चैन से सोने नहीं दिए। हर रात आप मुझे पुकारते हुए गुजरते रहे, हर रोज मेरी रूह मेरे बदन से खींचती रही। दूर ही दूर मैं आपकी हसरत में डूब कर मर जाती, मगर आपने मुझे डूबने भी नहीं दिया, मैं भाग जाती, लेकिन आपके खेमे ने मुझे घेर लिया। आप आ गए और आपके दिल की धड़कनों ने मुझे ये कहने भी नहीं दिया कि मैं कहाँ हूँ।

दिल है कि मानता नहीं। इस फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे, अनुराधा पोडवाल की आवाज भी, नगमा निगार थी रानू मलिक, मौसीकार नदीम शर्वन। प्रोग्राम की अगली पेशकश कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में सुनिए फूल और कांटे फिल्म का नगमा।

मोहम्मद अजीज और एस जानकी की आवाजों में आप सुन रहे थे आखिरी रास्ता फिल्म का नगमा, नगमा निगार थे आनंद बख्शी, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारे लाल। और शामिल लीजिए, सुनिए एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में साजन फिल्म का नगमा, बोल समीर के हैं, मौसीकार हैं नदीम शाह।

प्रोग्राम की आखिरी पेशकश लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में दिल तो पागल है फिल्म का नगमा, नगमा निगार अनबख्शी, मौसीकार उत्तम सिंह।

जनाब अब्दुल्ला ने मरने वाले मजदूरों के कुनबे के लिए वजीर आला के राहती फंड से 10-10 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया है। इसके अलावा कुलगाम जिला इंतजामिया की तरफ से फौरी तौर पर 6 लाख रुपए की इमदाद फराहम की जाएगी। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले में चतरू इलाके में आज सुबह सवेरे बादल फटने की वजह से आए अचानक सैलाब से बहुत से स्कूलों को बंद करना पड़ा है। हमारे नामा निगार ने इत्तला दी है कि लगातार बारिश से चेनाब वादी में आम जिंदगी मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से हुक्काम ने किश्तवाड़, डोडा और रामबन जिलों में स्कूल बंद कर दिए। स्कूलों को हिदायत दी गई है कि वो ऑनलाइन क्लासों का अहतमाम करें। अचानक सैलाब से जो देर रात 2:30 पर आया था, किश्तवाड़ जिले के छत्रु इलाके में वसी पैमाने पर नुकसान हुआ है। अचानक सैलाब से बड़ी मार्केट में पानी भर गया और किश्तवाड़ छत्रु सिंथन कौमी शाहरा बंद कर दी गई है। मरकजी वजीर जतिंदर सिंह ने बादल फटने की इत्तला मिलने के फौरन बाद किश्तवाड़ डिप्टी कमिश्नर पंकज कुमार शर्मा से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और उनसे वहां की सूरत हाल के बारे में जानकारी हासिल की। पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मुजाहरे जारी हैं। गुज़श्ता 4 रोज के दौरान मकबूजा इलाके में पाकिस्तानी फौजों की जानिब से अंधाधुंध गिरफ्तारियों के खिलाफ मुजाहरों के दौरान 50 से ज्यादा अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुश्तरका अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने इल्जाम लगाया कि सिक्योरिटी फोर्सेज इन अमवात के लिए जिम्मेदार हैं। एक बयान में अवामी एक्शन कमेटी ने मुजफ्फराबाद इलाके में देर रात तक मुजाहरे होते रहे, सड़कों पर लोगों ने अपनी बुनियादी हकूक के तहफ्फुज़ और मकामी हुक्काम की जानिब से किए गए वादों को नाफिज करने का मुतालबा किया। इसी दौरान अमरीका में इंसानी हकूक की तंजीम HRF ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में गैर मुसल्ला मुजाहरीन के खिलाफ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से ताकत के मुबैना इस्तेमाल की मजम्मत की। तंजीम ने पाकिस्तान हुकाम से मुतालबा किया कि वह गिरफ्तारियां बंद करे, मोबाइल कनेक्टिविटी बहाल करे और गैर कानूनी तौर पर ताकत का इस्तेमाल करने के लिए जवाबदेही को यकीनी बनाए। एक मकामी सिविल सोसाइटी ग्रुप का हवाला देते हुए HRF ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में मुजाहिरों के दौरान हजारों पुरअमन मुजाहिरों पर फायरिंग की। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत और चीन के दरमियान आज से सिक्किम में नाथुला दर्रे के जरिए सरहदी तिजारत दोबारा शुरू हो गई है, जिससे दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान एक अहम तिजारती रास्ते की बहाली होगी। तिजारत की बहाली से 6 साल तातुल खत्म हो जाएगा, जो 2020 से कोरोना वायरस वबा की वजह से पैदा हुआ था। तवक्कु है कि तिजारत की बहाली से सरहद पार तिजारत को फरोग मिलेगा, जिससे रजिस्टर्ड ताजिरों, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों और मुतल्लिका कारोबारियों को फायदा पहुंचेगा। नाथुला के जरिए तिजारत 4 दिहाइयों से जायद अरसे तक मुअत्तल रहने के बाद 2006 में दोबारा शुरू हुई थी। ओडिशा में महानदी दरिया में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन है, जिससे दरिया से मुतसिल नशेवी इलाकों में मजीद सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। वजीर आला मोहन चरण मांझी ने मौजूदा सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लेने के लिए आज सैलाब से मुतासर इलाकों का फजाई मुआयना किया। भारतीय मौसमियात महकमे ने रियासत में मजीद बारिश की पेशगोई की है, जिसके बाद इंतजामिया को हाई अलर्ट पर रखा गया है। महानदी दरिया में मुसलसल पानी बढ़ने से कटकपुरी, जगतपुर, जगत सिंहपुर, केंद्र पाड़ा और खोड़ा जिलों के नशेबी इलाकों में दोबारा सैलाब आने का खदशा बढ़ गया है। वजीर आला ने भद्रक, बारासोर, जाजपुर और क्वेंझर के सैलाब से मुतासर जिलों का भी फजाई सर्वे किया, ताकि मौजूदा सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया जा सके। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों में कम से कम 9 अफराद हलाक और 22 दीगर जख्मी हो गए। रूस ने ये हमले निसफ शब में किए थे। यूक्रेन की सरकारी एजेंसी सर्विस के मुताबिक सोलोम्यांस्की जिले में हमले से 5 मंजिला रिहायशी इमारत गिरकर तबाह हो गई, बाद में इसमें आग लग गई। राहती टीमों ने ऊपर की मंजिलों से 35 लोगों को बाहिफाजत निकाल लिया है। इस जिले में 2 अफराद हलाक और 8 दीगर जख्मी हुए, जबकि राजधानी कीव के डनस्की जिले में 7 अफराद मारे गए और 14 दीगर जख्मी हुए, जबकि हमले से आग लग गई और रिहायशी इमारतों, गाड़ियों, इंतजामी दफातर और दीगर गैर रिहायशी ढांचे को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने

0: कहा है कि उन्होंने अमेरिका के नायब सदर जेडी वान से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और वाशिंगटन में इस हफ्ते के शुरू में सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी मीटिंग के बारे में जानकारी फराहम की। उन्होंने सदर ट्रंप के साथ अपनी मीटिंग को मुस्बत और समर आवर करार दिया। शुमाली जापान के आओमोरी प्रिफेक्चर में आज 5.8 की शिद्दत का जलजला महसूस किया गया। जापान की मौसमियात से मुतालिक एजेंसी ने बताया कि जलजला 80 किलोमीटर गहराई में महसूस किया गया। ये जलजला मंगल को कुमामोटो प्रिफेक्चर में आए ताकतवर जलजले के कुछ दिन बाद महसूस किया गया। कुमामोटो प्रिफेक्चर में आए जलजले से वसी पैमाने पर तबाही हुई थी। कल हुकाम ने तजीर की के कुमामोटो जलजले से मरने वालों की तादाद बढ़कर 35 हो गई है। ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा आज सेमीफाइनल में शानदार जीत हासिल करने के बाद खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई है। खास खास खबरें एक बार फिर सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम के भोगपुरम में ग्रीन फील्ड एलूरी सीता रमा राजू बैन अलावामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में दहशत गर्दाना हमले में जख्मी होने वाला दूसरा मजदूर भी जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। भारत और चीन के दरमियान सिक्किम में नाथुला दर्रे के जरिए सरहदी तजारत आज से दोबारा शुरू हो गई है।
1: अभी तक आप हमारी नशरियात आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से समाप्त कर रहे थे। मीडियम वेव 1584 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी करगिल की आवाज़ है। सामिन आपसे लेकर शव ठीक 10 बजे तक हमारी नशरियात आप मीडियम वेव 684 किलो हर्ट्स के अलावा FM 100.1 MHz और साथ ही साथ न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी समाप्त कर सकते हैं। जी हाँ सामिन, हमारे अगले ऐलान का आप इंतज़ार कीजिए। Medium wave stonchina gbyana ni shijvina jbi kilohertz medium wave trugyana ni shijvina jbi kilohertz yang FM riya shere chik megahertz dona news on AIR ebika ngachas akashwani kargilna sirinchu dini jak pushin sher dona ogos silse chik akashwani kargil kana ngachi ding project bi promatic program nyam bu ngacha yang yanti shidalep sut program yan kan sarma chun se chenomon dona ka kapunul saga ngachi shidanna assalamu alaikum Уақс бұдар эпид отыр сұлға сон сұқ әстің әчі дейін еді ойы программ сада қалды күзік бәді дей программ перексі кәндесін ән мәзәд. Ирсам құран етті ла бұтна тәржім алай бісмілла.
2: Ауызу биллахи мин ашшайтан ар-раджим. Бісмілла.

0: Дэрэнтэ сэрин мөтө би кана тилтвэ янэн чэт бин. Мидэ мэ бикэ мэсэ закашвэни каргил на зэрэн чэт каста хабарын лэнтэс ян мэсэ.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का युवा अब दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। कर्नाटक के मैसूरु में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार सदैव ऊंचे रहे और उन्होंने शास्त्रों का आत्मसात किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैसूरु भारत की अनादि सांस्कृतिक चेतना का केंद्र है।
2: मैसूरु भारत की अनादि सांस्कृतिक चेतना का केंद्र रहा है। यहाँ के मंदिर, यहाँ की परंपराएं और उत्सव, मैसूरु का दशहरा, यहाँ के भव्य महल, इसका संगीत और साहित्य, भारत की विरासत इस शहर के कण कण में रची बसी है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना तथा औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आंध्र और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती है।
2: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, युवा क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज भलसवा कचरा निस्तारण स्थल का निरीक्षण किया और दिल्ली नगर निगम के अपशिष्ट निपटान कार्यों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी गई कि 31 जुलाई तक कचरा निस्तारण स्थल पर लगभग 99 लाख मीट्रिक टन अपशिष्ट का निपटान किया जा चुका है और शेष अपशिष्ट को इस वर्ष 15 अक्टूबर तक निपटाने की उम्मीद है। श्री लाल ने नगर निगम को निर्देश दिया कि लैंडफिल साइट पर आने वाले नए अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए हाल ही में आवंटित कार्य में तेजी लाई जाए। केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि 10 अगस्त को निर्धारित नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में

0: तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अब तक भारत ने 3 और स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। मुक्केबाजी में प्रीति पवार ने 54 किलो और जैस्मीन ने 57 किलो में स्वर्ण पदक जीते। 55 किलो में जादुमणि सिंह ने रजत पदक जीता। इसके अलावा सोनम राणा ने पैरा एथलेटिक्स के शॉर्ट पुट F57 वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। शुभम जोयाल को रजत पदक मिला। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत और सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पदक तालिका में भारत 8 स्वर्ण, 15 रजत और 7 कांस्य समेत कुल 30 पदकों के साथ 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Swami Vivekanand Cultural Youth Centre Vivek Smarak in Mysuru this evening. The memorial commemorates Swami Vivekanand's historic visit to Mysuru in 1892 when he met Diwan of Mysore, Sir K. Seshadri Iyer, and received financial assistance from Mysore Maharaja Sri Chamarajendra Vadiyar for his journey to the USA to participate in the Parliament of Religions in Chicago. Addressing the gathering on the occasion, Prime Minister Modi said Swami Vivekanand truly embodied the spirit of India. He highlighted that the country's youth are driving global growth.
2: Swami Vivekanandi युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
1: Earlier in the day, Prime Minister Modi inaugurated the Greenfield Alluri Sitaram Raju International Airport at Bhogapuram in Vizianagaram district of Andhra Pradesh today. He also dedicated to the nation, inaugurated and laid the foundation stone for key infrastructure projects worth around 18,000 crore rupees. Addressing the gathering, Mr. Modi said the projects launched today spanning roads and energy security reflect the rapid pace of Andhra Pradesh's development. Prime Minister Modi also witnessed a traditional Timsa dance performed by more than 13,500 tribal women, highlighting the vibrant tribal culture of North Andhra. National Security Advisor Ajit Doval was conferred the Lokmanya Tilak National Award 2026 at a function held at Pune today. The award, instituted by the Lokmanya Tilak Smarak Trust, was presented by Union Home Minister Amit Shah on the occasion of the 106th death anniversary of Lokmanya Bal Gangadhar Tilak. Speaking on the occasion, Mr. Shah said Ajit Doval has made an outstanding contribution to strengthening India's national security. Accepting the honour, Mr. Doval said he was deeply humbled by the recognition. He said freedom is not merely the liberty to act as one wishes, but a responsibility to place national interest above all else. The Union Government today released 1,09,019 crore rupees to state governments as an additional installment of tax devolution over and above the regular monthly transfer scheduled for the 10th of August. In a statement, the Finance Ministry said the additional installment is intended to give states more room to speed up capital and development spending. Oil marketing companies have reduced the price of commercial LPG gas by about 200 rupees per 19 kilogram cylinder today. The new price of commercial LPG cylinder in Delhi will now be 2,738 rupees, while in Kolkata it will now be 2,872 rupees 50 paise, in Mumbai

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नई वॉशिंग मशीन
3: अच्छा
4: यस। क्या हुआ?
2: अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है।
3: अच्छी धुलाई होगी,
2: है ना?
3: बैंक अकाउंट की। पैसे लेते वक्त QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं होती, उनके सिर्फ पेमेंट के लिए जरूरत पड़ती है। इसीलिए नामालूम कोड या लिंक से चौकन्ने रहिए और नुकसान से बचिए।
2: बच गए धुलाई से।
3: ये नई धुलाई RBI कहता है
5: जानकार बनिए चौकन्ने रहिए।
0: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
6: रंगी बिजनेस उल्लास के तंग मिफिया लेंचिक आकाशवाणी रोक्स यंती चोलन लोकल इन या फायुली थोकाइन आकाशवाणी स्तनचाइन कस्टमर उन सकते लेपीस कप्स मांगमो धरने अंतिस नंग या दफ्तर या हटी का युग से नंग बांग यंचाइन आकाशवाणी गा केंद्र चिकी का एडवर्टाइजमेंट बुकिंग आकाशवाणी लोकसो चैनल उनका एडवर्टाइजमेंट तंचाओ समो दोना रिंग इन से होत बुकिंग बेफिया कॉल बाजात 8700014242 का।
7: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
8: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
7: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
8: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
7: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर
8: 8700014242। सुनो ना।
7: हाँ?
8: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
7: तो रोका किसने है? हाँ?
8: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
7: मुझसे।
8: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
7: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
8: पर उससे मेरा क्या फायदा?
7: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
8: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
7: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: سجد بوني في هذا الانتدي برنامج بلايان انجد بين برنامج سير تنكن بين من محمد حسين يعني برنامج بروسر بين من غلزار حسين ميديا ما يبدون افهم چانالي كدو اكاشواني كرگلين وقص بدار تسو دردون سنسو كستا برنامج بروتشوكي دا چين موني فيا برنامج سير تنكن بين زهربانو مير
1: हैंडलूम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करगिल लद्दाख की जानिब से 7 अगस्त से 14 अगस्त तक नेशनल हैंडलूम डे 2026 मुनक्किद किया जा रहा है। हैंडलूम डिपार्टमेंट करगिल से ताल्लुक रखने वाले तमाम आर्टिजन्स, एंटरप्रेन्योर्स, हैंडलूम सोसाइटीज और सेल्फ हेल्प ग्रुप से गुजारिश की जाती है कि अपने हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को नेशनल हैंडलूम डे एग्जीबिशन में शोकेस करने के लिए जल्द से जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन और मजीद मालूमात के लिए हैंडलूम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करगिल से फौरन राबिता करें। हैंडलूम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करगिल लद्दाख की जानिब से अवाम की मफाद में जारी।

0: ਤਾਂ ਲਗਾਏ ਛਾਤ ਪਜੂ ਆ ਤਖੋ ਇਨਸਤੇ ਚਿਕ ਤਾਂ ਜੇ ਮਨਾ ਛੇ ਘੰਟੇ ਸਾਤ ਘੰਟੇ ਟਾਈਮ ਚਿਕ ਛਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਨਾ ਰੂਟੀਨ ਚਿਕ ਮਿਜਾ ਚਾ ਛੇ ਸਾਤ ਘੰਟੇ ਫਰੂਆ ਮਤਲਬ ਤੋਕਸ ਬਣਾ ਗੰਤੇ ਸੇ ਦਿਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਿਉਂ ਸੇ ਤਾਂ ਸੇ ਤੰਗ ਮਤਾਰ ਗਿਆ ਨਾ ਮਨਾ ਯੰਗ ਦਿਨ ਮੀ ਬਚਾਇਆ ਉਸਕੇ ਲਈ ਛੇ ਸਾਤ ਘੰਟੇ ਤਸ ਬਰਦਾਸ਼ ਰਿਕਬਾ ਸੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਕਬਾ ਸੇ ਯਾ ਖੰਮਾ ਪਾਣੀ ਖੋਆ ਛਕ ਛਕ ਸਪੋਰਟ ਬਸੇ ਖੋਲ ਲਾਂ ਸੇ ਪੀਪੀ ਤਾਂ ਚੁਕ ਚਾਇਆ ਫਰੂਆ
1: ਫਰੂਸਲ ਆਮਾ ਮਾਇਨ ਨਾ ਮਨਾ ਖੁੰਤੇ ਜ਼ਿਆਂ ਚਿਕ ਛਾਂ ਬੋ ਨਾ ਦੋਸਤ ਚਿਬਾ ਸੰ ਥਮ ਸੇ
0: जरूरी इंजू है क्योंकि वो एक वैक्सीन का काम करता है जो उसके से ना 24 घंटे वैक्सीन था उससे भी ज्यादा वो मुफीद चीज है एक फायदेमंद चीज
1: है सर्जरी बाना खुआ लंग्स पंगन मेमेद फ्रूट जो लजक पंगन मेमेद छाना का चूज वस्ता
0: दो ताँचा जो या जैसे सर्जरी मतलब सर्जरी बस यो लांस पंगा में या फ्रू दून लखूर बामया न का तो दो मना चिरे दें दी बाउल मत स्टीली बाउल चम्मच खुरे दो फ्रू अमन पिलाई बचा जुगा फॉर्मूले की तरह ज्यादा ध्यान ताँचा में पजू फॉर्मूला दूध ताँचा ना आता मन आसान ही नहीं आसान छोड़ चिन्ह पहले का ना मतलब जेर या तंग मांग आसान छोड़ चिन पहला पहला आता चा जेर बना हम खुद उस पेन से गुजर रहे होते हैं छा ना लेकिन दो सबसे दिन दारिक बा से एडजस्ट एक बा से ना उदो तांचा पीपीओ तांचा जरूरी इन सुपर
1: बख्शिश जो मन देमो मौजू छा ना जी का मन मजबूरी सो से मांगन मा बोटल फीडिंग तांग था जो बोटल फीडिंग तांग ना का तो दो निकना ना तांग चुक नुकसान दियो
0: बोटल फीडिंग तांग चास पुना बिल्कुल आसान इंजो या तांग मा कोई ये मसला नहीं हो जाता है पहला पहला आता छोड़ बात आसान है लेकिन याद ना जो बहुत सारे उसके नुकसान भी हैं एक तरफ देखा जाए तो ठीक है नुकसान छी जरबाना पहला ना उदो माना बोटल वो ऐसा होना चाहिए निप्पल ना बोटल इसका पूरा स्टाइल होना चाहिए उसके लिए आता यंग टाइम फी से दो स्कूल बर्गोस पर देखना निप्पल पुसा बर्गोस पर पहला तो उस दो बाजार मार्केट या से दोनों सब परचेज बर्गोस पर जो बोटल क्यों मरगोस पर निप्पल क्यों मरगोस पर या उदो डब्बे दें मतलब बहुत सारे काम है उसके छाना नुकसान मतलब उसकी बॉडी के हिसाब से दो मतलब एडजस्ट मिछा जु दिया जल्दी खचिया ज्यादा ग्रामो छात खचिया डोनमो से दो प्रॉब्लम छात उससे गैस बन जाता है जब फ्रू नहीं तो गैसों से कोलिक पेन देखना फ्रू मतलब बहुत रोते रहता है बहुत सारे नुकसान आते हैं बच्चा मना उदो नुकसान मामू छाचिन फ्रू नुकसान मामू छाचिन सु या खोलता मामू चिन सु कभी उसको डायरिया हो जाएगा कभी उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा ठीक ची मना लूस मिल लूस पत पाया जैसे अमी पीपी आ वो बिल्कुल नॉर्मल लूसिन खो उदो चंग अमी पीपी मना कुदरती दिन दिखी दे ना को ज्यादा गर्म चिक छाचिन ना को ज्यादा ठंडा छाचिन ना उदय चंग गैस उसमें कुछ बबल्स नहीं बनते हैं ना उसमें कुछ गैस चील दंचमेन जो की फ्री इलते हैं सो से ना उदो चंग इन्फेक्शन
1: मजबूरी खुआ बोटल फीडिंग बार घोष ना तो खुआ चूज वस्ता चिका बार घोषिन ताकि खुआ इन्फेक्शन मिशो फ्रूला
0: बिल्कुल तो उदो तना माना बिल्कुल ख्याल जगचा जो या पहला ना कोशिश बचा बचा जैसे यारंग वर्किंग मॉम यो तो यारंग वर्किंग वुमेन चिक इन का तो यारस यारी पीपीओ जैसे दरन ना माना असना सी सोसियो में जो दरे इलेक्ट्रिकल ब्रेस्ट पंप यो मत या ब्रेस्ट पंप मैनुअल खुरा यो मत इलेक्ट्रिकल यान ना का तो इलेक्ट्रिकल ही ठीक छा दिया उदो फॉर्मूला बसे ना गंती ब्रेस्ट पंप खुरे उदो उर्जन पुफी से स्टोर बसे जग ना मतलब वो आराम से 12 से 24 घंटे तक वो खराब मिछा लो जो या फ्रिज से उदो फ्रुआता ना का तो पहला ना उदो बचाया अगर आप वर्किंग वुमेन हो तो दो छचा में यारी मिल्क फ्लो कम ही उतना का तो यार मजबूरन वो आपको देना पड़ेगा फॉर्मूला तंग न का तो पहला ना यारी माना बोटल वोटल ख्याल जगचा जो हाजू कि प्लास्टिक की बोटल यूज मी बचा स्टील जितना हो सके स्टील उतना या शीशी उदो यूज बचा उदो बिल्कुल बॉयल बसे 3-4 मिनट 5 मिनट ठीक बसे बॉयल बसे स्कम चुक से देखना निपल मतलब

0: चेन्ज बेन दुख्छ जु निपल अनि त्यो
1: कसा
0: पुराना मिजक छ एक साल दो साल सफा डुल चुप मिजक छ जो या
1: ओने जु
0: हर दो तीन महिने चेन्ज बच्छ
1: कसा
0: निपल अनि चेन्ज बच्छ ओदो सब ठिक बसे स्ट्राइल बसे देखन ओदे क्वान्टिटी के हिसाब से जितना एरा डॉक्टर इस रिकमेंड बे त्याच गेरा क्वान्टिटी आ ओदे मेजर बसे ना देखन फ्रू आता छ जो ताकि खोई बॉडी ओदो मतलब एडजस्ट बुक रिकवर छ खोई बॉडी आ
1: बख्शिश जुमा नरदेमो मोजु यरस दी बोटोले पोगा चुक्ष जस्ता चिका तंग मरगो चिंता की खोइन पेक्षिन मि छोक जरे छना दंग आता दक्ष अमी पीपी तंग ना हजो खचिगिस माना गोजि गे जरे दो खचिगिस ओचोगार गोजु से तंग मामे जरे मलाप रंग बॉडी हा शेप जिक पा जरे चाम सिख दूर जोन इंजु या बोटोल अमे पीपी तंग ना का तो अमा ना फ्रुंग इसका चिची फायदा योद बख्शिश
0: बिल्कुल जो यारस माना एक सही स्पिरिक यारस क्यों जो
1: बख्शिस
0: दर मतलब दी जमाने बोमोनी ज्यादातर जनरेशनी दी जनरेशनी बोमोनी जर इंदुक जो
1: ओना जो
0: ता पीपी तांग इंदुक ना का तो गंती शेप पूजिगे
1: फिगर जिगे
0: फिगर जिगे ऐसा कुछ नहीं है ये सारा मिथ कहलाता है इंग्लिश या जर ना का तो दियो मिथ सीख जर चिंजू या चंग उदो सो सीख देना में उल्टा इसका क्या हो जाता है इसके इतने सारे फायदे हैं जो या गंधा प्रेगनेंसी जैसे कि गंती वेट गेन छे जो पहला गंती वेट या फिगर जो नॉर्मल हो ठीक ठाक हो अब प्रेगनेंट हो जाते हैं 9 महीना 2 साल फिर हमारा वेट गेन हो जाता है इतने सारे कैलोरीज हम मतलब लेते हैं छना गंती वेट पर गेन छा जब गंते फ्रू पीपी तंग है फ्रूस जब पीपी थूंगे थूंग जा नहीं उदो उसी टाइम से मतलब हमारा वेट जो है लॉस होना शुरू हो जाता है गंती वेट पर जो प्री जो गंती यूथ पिन पहला गंती वेट यूथ पिन उदो जैसे था पहले दिया उदो चौगा वापस यूं मत जो
1: मक्षीज जो ना फीडिंग बना हाँ जो फूला ब्रेस्ट फीडिंग का
0: ब्रेस्ट फीडिंग तंग माना फ्रूस जब थूंग पीपी थूंग माना गंती बॉडी अनु जैसे गंती ब्रेस्ट में हमारी छाती में गंता क्लॉट व्लॉट चांग छचमिन जैसे गंती मिली फ्लो गंता तो इसके खान आने इन माना मिली क्यों चिंदे जो दो चांग जम हुआ छचमिन क्लॉट व्लॉट छचमिन देख नची छाजू ब्रेस्ट ब्रेस्ट कैंसर जो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है छह बढ़ाई चंदू इसीलिए बढ़ाई छाजू क्योंकि वो मतलब ज्यादातर इस चीज को तरजीह नहीं देते हैं मतलब ओदो ब्रेस्ट फीडिंग ही देन दोंग कम छचिन जो या उसके साथ साथ ओवरी ब्रेस्ट कैंसर ही देन दो कम छचिन तेदा तो कम छचिन दोनों ओवरी से कैंसर हो मत जो या ओदो बिल्कुल कम छचिन
1: और इस कैंसर यूट्रस कैंसर यूट्रस कैंसर
0: कम छचिन जो छचा मेन माना ब्रेस्ट फीडिंग छाना छोरा कुदरती तौर पर एक ऐसा ये है छाना यंग ब्रेस्ट फीडिंग ही ओदो फायदा है जो ब्रेस्ट फीडिंग बना का तो गंते हार्मोन्स यो गंती गंता स्ट्रेस छा जो पोस्ट पार्टम डिप्रेशन जर बतिया दारे के सर क्या ना गंता डिप्रेशन चा छा तो ऐसे अच्छे हार्मोन्स वो रिलीज करता है जो गंता दे डिप्रेशन या गंता बचाए छा बच्चे का माँ के साथ और माँ का बच्चे के साथ माने एक बिल्कुल खुशी एहसास यार खुशी के दिन महसूस
1: फीड बचाना
0: बिल्कुल यार डिप्रेशन पे यार खत्म छा खुशी क्यों चिन पाया नहीं तो आमतौर पर क्या होता है जरबाना या उसके सर क्या अपना बिल्कुल डिप्रेशन यहाँ छिंदू वो मुखाजी उनको मना फ्रून तस्नी हो मींदू यहाँ चांद लस बस नहीं हो मींदू स्पेरा तस्नी हो मींदू चाह जरबाना खो तो मतलब छात पाया अब ये एक ऐसा कुदरती एक कुदरत ने एक ऐसा निजाम बनाया है इस चीज से जो है दूर हो जाते हैं ये चीज मतलब घंटा कम छात पाया डिप्रेशन पे घंटा कम छात दी ब्रेस्ट फीडिंग का
1: बख्शिश बख्शिश जो मैं नर्दे में एक मोस यारस की इंगातांग फ्रू ना आमे शकिल ला दो सोच गालू शिक पैदा है चिन की फ्रू आमे का सिंगिंग सिखचा आमा फ्रू का सिंगिंग से दो सोच है चिन सुहाजो या दो ना फायदा हो तो इन सुजो छाना यारस ला जुक पिका आती प्रोग्रामिंग कन अच्छे नमो ला यारस चिप सिंच साले दी ब्रेस फ्री का बख्शिश
0: बिल्कुल जो गस दियो एरा एंतांग मेसेज तंग खासकर सोमा अमान ला
1: बोमोन ला जो जनरेशन जो न्यू
0: न्यू मदर्स ला और उनके उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी ज्यादातर चाहे बना मतलब दोन ला सक्सेस दिन दा हार्ड रिक्षात पजू ब्रेस्ट फीडिंग बा मना सक्सेस दिन दा रिक्षोर बाद
1: कसा
0: छानो खुई देंदा बच्चा पहला ना फैमिली खुई सपोर्ट बच्चा जो यार सपोर्ट बसे खुई का

0: मुश्किल सोरेन दुख दो आसान बचुक छ ओदा अगर प्रॉब्लम छ नका तो रंगै डॉक्टर न यहाँ बो कंसल्ट बचा खून काउंसलिंग लेन छ गचु गंगस छिबा गचु गंगस पीपी ता जैसे निपल्स नी बने होते हैं छना ओदन फैमिली संखवा सपोर्ट बसे कोई निपल्स उन दिन ओदन सच्चो से बढ़िया बसे खवा सपोर्ट बसे पीपी ता चुक छ जो
1: बख्शीश जब पहला चुक खोस क्या न खवा मन खच ग दिया दंद छ जो सर्जरी छ न का तो खवान ममेत दूला दुई एरेस मन खचन स्पेरिग मुस्की क्यों खे रिलेटिव सुन हा छन ला दुख से चिबा संग पहला पीपी को ख्यांग लेप चुपा ना देखा ना योक्षे था जो
0: ओ जो बिल्कुल अदो माना जरूरी इन जो
1: बख्शीस
0: पहला रंग यों चा माना रंग यंबो दुख चा माना जरूरी इन या
1: ओना ना जंजो शिख जो
0: जंजो शिख दुख पा कोई सपोर्ट बचा माना जरूरी इन दारे दोरी का जो ज्यादातर दी चीज आना दूर छेन छात गन के अमाउंट ज्यादातर ब्रेस्ट फीडिंग को तरजीह नहीं देते हैं छोड़ देते हैं फॉर्मूला ज्यादा यूज भी कोशिश बा दो मिबा चाया क्योंकि इससे बच्चे को भी नुकसान है या नयांग फ्रोकोलिक छेद खो यंग कॉन्स्टिपेशन छेद यहाँ डायरी एक छेद यहाँ नमूनी एक छेद जो छा यहाँ अंतंगा प्रॉब्लम छ इससे बेहतर है थोड़ा हम खुद मेहनत करेंगे
1: पहला
0: बच्चे को
1: मेहनत
0: पहला शुरुआत यहाँ एंजॉय अर्घ्या ना फिर आदत हो
1: जाता
0: जब पहला थूंग ना तो अर्घ्या फ्लो फिर अच्छा खासा हो जाता है वो बच्चा पी लेता है तो छाना शुरुआत का सबसे खो हेल्प बचा अमा इन्ना का तो अमा खोरे सन सबसे मतलब मेहनत रिक बचा जो या
1: बख्शी जो मन अर्दमो मो से यारे संगाती अमे पीपी स्कोर ला जो दुतांग मचाम जिक छा छा इंजरे फेसबुक से यारे मो या रेस पचिक जी यारा ओजु छेरिंग मो या सलाम अलैकुम
0: या जो अस्सलाम वालेकुम
1: नक्सा छख पाई एंटेस नमो सलामे कना अती अमे पीपी स्कोर ला दिसे गने न्यूट पिन दे मायो देंते संग दे दिसो निकना फन खेलेनो कसने यंतेस प्रोग्रामी छंसे का जरीना बतुलना प्रोपानिकना स्तुत खेक यन मजात
2: बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।

0: टूरिस्ट चेक पोस्ट का और कुछ रिलोकेशंस हैं, वो दो तीन मुद्दों पर लोगों ने अपने मुद्दे उठाए हैं, उन मुद्दों को भी हम लोग रिव्यू कर रहे हैं और देख रहे हैं। और जैसे ये ड्रग्स के खिलाफ जो एक मुहिम यहाँ पर शुरू होने वाली है, उस संदर्भ में भी हम कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो अभी हमारा फोर्स में रिक्रूटमेंट भी चल रहा है और अभी हमारे जो प्रमोशन केसेस हैं उनके भी केसेस काफी सारे ड्यू है, उसके लिए भी अब ट्रेनिंग का प्लान बना लिया गया है ताकि इनके प्री प्रमोशन कोर्सेस हो जाते हैं और फिर उसके बाद इन सभी जिलों में उन सभी अफसर्स की पोस्टिंग भी हो जाती है। जैसे साइबर क्राइम के संदर्भ में भी मैं कहना चाहूंगा कि उस संदर्भ में भी हमने साइबर हेल्प डेस्क सभी नए जिलों में बना दिए हैं ताकि हम समय रहते त्वरित कार्रवाई साइबर क्राइम पे भी कर पाए। वुमन पुलिस स्टेशन, वुमन जो हेल्प डेस्क है उनकी ट्रेनिंग वगैरह भी की जाएगी ताकि जितने भी इनके मसाइल हैं, मुद्दे हैं, वो समय पर हल किए जा सके।
1: लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख विनय कुमार सक्सेना सोसाइटी ना फार्म सुनी रजिस्ट्री चारिशपुर लद्दाख जिला दुनके जिला डिप्टी कमिश्नर उनला तत्पी इज इन तहसीन यंग दी तोन पो आवामी खदमात उन सख सख पल लेप चुकचाओ न छमसी हुकूमत साजी अस्के छ चुकचाओ इन दीटर छत पुस रजिस्ट्रेशन इन लसुन समो छचाउन मीमांसुन एंटरप्रेन्योर सुन सेल्फ हेल्प ग्रुप उन दोनों रजाकार इदारा उन लर रंग सोसाइटी उन रजिस्टर चोचाउन पार्टनरशिप फॉर्म ले मछा रंग सुसे जिल्ला उन्हें अनुक्ष चौंग यंचा छचाइन लेफ्टिनेंट गवर्नर इस दिल लस्थिर पुस इंतजामियार किंग्समर ग्याला ना तनपो दोनों मीमांसुन लब फंतोक्ष चन हुकूमत साजी गोन चाओ यंग आवामी खदमात उन गोजगोई कल लेप चुपी फ्रालुक सुन गोन मछ छ इन जरबसों काउंसिलर शरगोल कॉन्स्टिट्यूएंसी मोहम्मद जावेदी जरबानुजम से जंगली दरनमो युल लाजुक से नंगखांगमा खचिगा जुदाखरतां सीन दियोस बसे युल पाउन जिक्स मोचन द्रोफ मोचन सोंसियो जरे काउंसिलर मोसेबी जरबसों दरनमो जुक्षास टू डोबालंग खचिगा जुदाखरतां सीन यंग दियोस अमीमा सुनली स्ट्रोंग जिक्स मोसों सीन वाके वाइल्ड लाइफ इलुंग वटनरी लुंग दोना वाका पुलिस स्टेशन इचोसा दी मलसानी जिक्स खोरंग बसीन काउंसिलर शेरगोल इस दिया नजम से मुतालिका महकमा उनला जिले चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर दोनों डिप्टी कमिश्नर ला दिस कोला शुखमो गोम्बा उनले ने दी फिया लंपिंग्स बोल जरे जवाब सीन कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट यूटी लद्दाख इस आल चंगथंग पश्मीना ग्रोवर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड दोनों जम्मू कश्मीर बेंगी लाखथुदिका खचुल्ला न्योखन न सोंगलेन बखानुनी थुत लद्दाख तनपोनर ग्याला पश्मीना गोन चुपी दोना देफिया बाजार इसके तमित तो न मिर्चिक मल्ला ख्योंसपिन डिप्टी कमिश्नर जिला चांथांग नीतीश राजोरस दी वासला फेस्पा डोन फे खाकुर बस खोंस चांथांग मंगयुन लाख चिगनार गियाचू चांगरा नोरुन योद जरिन दियुला मियुली थोगे का गोन चुपा लेगिना खाकचन इंदर बसों कांग्रेस कोऑपरेटिव सोसाइटी यूनिस लेगी ना खाकचंद दिस कोरियन लास बचा इंजस दी वक्सला जम्मू कश्मीर रिर्गिया थले पश्मीना न्योखन बरामद बखन दोन इक्तिसादियत ना इंडस्ट्री सीर गोस्किनुन दोन रियस्त्री दिया मलसाने ना दियो ना थुद योत खानुनिस खालेंस पिन दी मिर्चना पश्मीना स्कियद ला क्यों खानुनिस जच्चन पश्मीने स्तलजोस बासों यां दिया ना थुते वेल्यू एडिट चलावनां स्तलजोस बसीन मिर्चना तम फोग्राफो चेन क्वालिटी ब्रांड जीआई सर्टिफिकेशन डिजिटल मार्केटिंग न गरेलो बेनुल अक्वामी बाजार लसके तम स्कोर ला तम फोग्राफो छासों लुंगी छोस न दीफिया डिजिटल प्लेटफॉर्म चिक्स चोआ यंग कोऑपरेटिव मेंबर उन ला डिजिटल पेमेंट ये खदमात उन थन चुक पीफिया दोना बाजार इन्फॉर्मेशन नंगियो खन न छोंग लेन बखानु नि बारे अनु लिंकेज पोस के तं चेका छोरतां सीन चीफ सेक्रेटरी युति लद्दाख आशीष कुंद्राज दिरिंग तुर्तुक दोन नोबरे ब्योगदंग गामी युली यर्गिया सुनीला सुनी तलुक सिफिया जिक्स खोर बसिन दी जिक्स खोर चना चीफ सेक्रेटरीज लोकल फमामीन एदारा उन युर्गोस किन उन दोन युल पान नंग यंबुल लोकसो यर्गिया सिस खोर उनिका तंपो ग्राफो बसिन दी वासला खोंगा लर्गिया पत्सा थांगी सोमा सेटलमेंट एरिया स्कोर लंग मेमोरेंडम चिक ततिन ब्योगदंग चीफ सेक्रेटरीज पब्लिक लेबोरेटरी जिक्स खोर बस दोना दी युलसानु चीफ सेक्रेटरीज गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल ला दुजदंग चिगां छोरतांगा सोमेन दी वासला कोन सोमार चोखन तुर्तुक म्योगदांग तहसील ला ग्रेट पावर न थुत पीर दिया हुआ बासिन खुरी जिक्स खोर सना जनाब कुंद्रास तुर्तुकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर ला जिक्स खोर बासे दी मरकज पैनो दलुक से खदमात उन समंतांग इग्रेलुन लेबोरेटरी खदमात न एक खचन चलागुन ला सुन ला तलुक बासों में दी वासला कोन यंबो यूटी

दुनिया तक पहुंचाने का। सबमिशन सिर्फ ऑनलाइन होगी फिल्म फीडबैक के थ्रू, और फिर आपकी फिल्म को मिल सकता है ग्लोबल ऑडियंस के सामने स्क्रीन होने का मौका श्रीनगर, जम्मू और गुलमर्ग जैसे खूबसूरत वेन्यूज पर। तो इस एक्सटेंडेड अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए, आज ही विजिट कीजिए www.iffjk.org। फिल्म फ्रीवे के थ्रू अपनी फिल्म सबमिट कीजिए और बनिए IFFJK 2026 रंगे सिनेमा का हिस्सा। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, जम्मू एंड कश्मीर।

आज 8460 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी। दीही तरक्की और पंचायती राज के वजीर जावेद अहमद डार ने जम्मू में एक मीटिंग के दौरान सूबे में अमलाए जा रहे फ्लैगशिप प्रोग्रामों और तरक्कियाती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। खासतौर से जीराम जी, पीएम एवाई जी, एसबी एएम जी, आरजी एसए, आईडब्ल्यू एमपी और एनआरएलएम स्कीमों की अमलावरी पर तफसील से तबादला ख्याल किया। वजीर मौसूफ ने इन स्कीमों की अमलावरी में तमाम सतहों पर शफाफियत और जवाबदेही लाने पर जोर दिया। मरकजी काबीना ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम को माली साल 2030-31 तक तौसी देने को मंजूरी दी है। पांच वर्षों के दौरान स्कीम की अमलावरी के लिए 3.15 लाख करोड़ रूपये मुख्तस किए गए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के कायमुकाम चीफ जस्टिस जस्टिस संजीव कुमार की सरबराही और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के जज व जम्मू कश्मीर जुडिशल एकेडमी के गवर्निंग कमेटी के चेयरमैन जस्टिस राजनेश ओसवाल की निगरानी में जम्मू कश्मीर जुडिशल एकेडमी ने श्रीनगर में नए तैनात किए गए सिविल जजों के लिए प्री अपॉइंटमेंट इंडिकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर अदलिया के कई जज साहबान और अदलिया से जुड़ी कई दीगर अहम शख्सियात मौजूद थी और मुकर्ररीन ने शुरका को जुडिशल जिम्मेदारियों के मुख्तलिफ पहलुओं से रोशनास कराया। किश्तवाड़ जिले के छात्र इलाके में आज सुबह बादल फटने की वजह से आए अचानक सैलाब से स्कूलों को बंद करना पड़ा। आकाशवाणी के नुमाइंदे के मुताबिक मौसलाधार बारिश से चनाव वादी में आम जिंदगी मुतासिर हुई, जिसकी वजह से हुकाम ने किश्तवाड़, डोडा और रामबन अजला में तालीमी इदारे बंद कर दिए। ताहम उन्हें यह हिदायत दी गई कि वो ऑनलाइन क्लासों का एहतमाम करें। इस दौरान किश्तवाड़ छात्रों सिंथन कौमी शाहरा बंद कर दी गई है। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने बादल फटने की इतला मिलते ही किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर से टेलीफोन पर बात करके उनसे वहां की सूरतहाल के बारे में जानकारी हासिल की। जम्मू कश्मीर में 7 से 10 सितंबर तक श्रीनगर में मुनक्कद होने वाले पहले बैन अक्वामी फिल्म फेस्टिवल IFFJK में शिरकत और फिल्मों के इंदराज के लिए आज आखिरी दिन है। फिल्में रात 12 बजे तक दाखिल की जा सकती हैं। मेले के लिए अब तक 50 ममालिक से 900 से ज्यादा फिल्में मौसूल हो चुकी हैं। एक अहम पेशरफ्त के तहत हुकूमत जम्मू कश्मीर ने बिल्डिंग परमिशन के लिए यकसां फीस निजाम मुतारिफ किया है। एक सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक फीस का यह नया निजाम यूटी भर में तमाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों, म्यूनिसिपल काउंसिलों, म्यूनिसिपल कमेटियों और डेवलपमेंट अथॉरिटीज के हदूद में आने वाले इलाकों के लिए लागू होगा। नए निजाम के तहत सभी इलाकों में तामीराती ढांचों के लिए इजाजतनामों की हसूलियाबियों का अमल भी अब यकसां होगा। आकाशवाणी से हर शाम 6:25 पर नशर होने वाले कश्मीरी खबरों के कौमी बुलेटिन के नशरे का वक्त तब्दील कर दिया गया है। ये बुलेटिन अब 4 अगस्त मंगलवार से हर दिन शाम 6:15 पर नशर हुआ करेगा। सदरी जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक 2026 बिल को मंजूरी दी है। इस बिल को पार्लियामेंट में पिछले माह की 30 तारीख को मंजूरी दी गई थी। इस कानून का मकसद सख्त सजाएं मुकर्रर करके फास्ट ट्रैक अदलिया कायम करके इम्तिहानात के निजाम में गलत तौर तरीकों की रोकथाम करना है। इनकम टैक्स महकमे ने कहा है कि साल 2026-27 के लिए 31 जुलाई तक 5,90,00,000 इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में महकमे ने टैक्स अदा करने वालों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनके एतमाद और बरवक्त टैक्स अदा करने से मुल्क की तरक्की को दवाम हासिल होता है। कौमी सलामती के मशीर अजीत डवाल को आज पुणे में मुनक्कद एक तकरीब में वजीर दाखिला अमित शाह ने लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026 अता किया। यह एजाज उन्हें मुल्क की कौमी सलामती को मजीद इस्तेहकाम बख्शने के लिए उनके कलीदी रोल को सराहते हुए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं बरसी के मौके पर दिया गया। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में तकरीबन 200 रूपये की कमी की है। नई कीमत का इतलाक आज से हो गया है। बुलंदपाया वली हजरत नजमुद्दीन अहमद अलकुबरी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स आज मनाया गया। इस सिलसिले में तारीखी खानकाह मौला श्रीनगर में वाका हजरत मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के आस्तान आलिया पर एक बड़ा इज्तिमा मुनक्कद हुआ, जिसमें काफी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। नमाज जुहर के बाद खतमातुल मौजमा, दुरूद अजकार और औराद खानी की रूह परवर मजालिस आरास्ता हुई। सदरी जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो दौलती मुश्तरका खेल 2026 में खवातीन के 57 किलोग्राम जोड़ो मुकाबले में चांदी का तमगा जीतने पर भारतीय खिलाड़ी यामिनी मौर्या को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पैगाम में सदरी जमहूरिया ने कहा कि यामिनी की इस कामयाबी के साथ भारत ने इन खेलों में जोड़ो का तीसरा तमगा हासिल किया है। इधर वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने भी यामिनी मौर्या को जोड़ो खेल में

0: चांदी का तमगा जीतने पर मुबारकबाद पेश की है। और अब मौसम, महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 28.3 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33.5 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:43 और गुरुबे आफ्ताब शाम 7:31 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। हमें इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
1: सामीन आदाब, आज का तबसरा लेकर मैं सुहेल भट हाजिर। पार्लियामेंट के मौजूदा मानसून इजलास के आगाज से अब तक जम्मू कश्मीर के हवाले से एक गैर मामूली सूरत हाल सामने आने लगी है जो पहले इस तरह नहीं हुआ करती थी। लोकसभा इजलास की हर एक नशस्त में जम्मू कश्मीर के जमीन में सवालात उठाने, सवालात पूछने और जवाबात हासिल करने की मुतवातिर कोशिशें हो रही हैं, जिससे एक मुस्बत अवामी तासर उबर रहा है। लोकसभा और राज्यसभा के दोनों ऐवानों में मुंतखब होने वाले अराकीन ने ऐसे हर एक मसले के हवाले से हुकूमत से जवाबदेही मांगी है जिसका बराह रास्त वास्ता लोगों की रोजमर्रा जिंदगी और तामीर तरक्की से है। एक अच्छा पार्लियामेंटेरियन वो होता है जो कानून साजी, अवामी नुमाइंदगी और हुकूमत की निगरानी के फराइज को ईमानदारी और महारत से अंजाम दे। अवामी नुमाइंदगी करने की बुनियादी खसूसियात में अपने हल्के के लोगों के मसाइल से वाकिफ होना और उनकी आवाज ऐवान तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसे कानून साजी में महारत होनी चाहिए। नए कवानीन को समझना, उन पर बहस करना और मुल्की मफाद में कानून बनाना इसकी जिम्मेदारियों में शामिल है। पार्लियामेंट के इजलासों और कमेटियों की कार्रवाईयों में बाकायदगी से हिस्सा लेना, हुकूमत का एहतसाब करना, अवामी फंड्स के दुरुस्त इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत से सवालात करना इसके हलफ में शामिल है। ऐवान में मुखालफीन के नजरियात को सब्र से सुनना और तहजीब के दायरे में बहस करना इसकी अवलीन जिम्मेदारी है। बैन अलाकौमी पार्लिमानी निजाम में ये बुनियादी निकात हैं जिसकी पैरवी तकरीबन हर एक रुकन पार्लिमान करता है, लेकिन पिछले कई वर्षों से जम्मू कश्मीर के अराकीन पार्लिमान के हवाले से ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई कि हुकूमत से मुख्तलिफ स्कीमों की अमलावरी, फंड्स की फराहमी, तरक्याती प्रोजेक्टों की जानकारी, माहौलियात, जंगलात, आपाशी, जल शक्ति, सेहत आमा, तामीरात, टूरिज्म, अलगर्ज हर एक शोबे के बारे में जानकारी हासिल की जाती, जिसका राह रास्त असर जम्मू कश्मीर की मईशत और इसकी तामीर तरक्की पर पड़ता है। दयानतदारी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मौजूदा पार्लियामानी इजलास के दौरान जिस तरह जम्मू कश्मीर के अराकीन ने लोकसभा और राज्यसभा में सवालात उठाए या सवालात पूछे हैं, पहली बार अवामी नुमाइंदगी का हक अदा किया जा रहा है। हालिया अयाम में दोनों ऐवानों में जिस तरह की कारकर्दगी अराकीन की रही है वो इस बात का गमाज है कि मुंतखब अराकीन का रोल किस कदर अहम होता है अगर वो इससे अदा करना चाहेंगे। पार्लियामेंट अवाम का नुमाइंदा इदारा है। अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं और अवामी नुमाइंदे अवामी मसाइल को उजागर करते हैं। इस वक्त मुल्क के अहम मसाइल और जम्मू कश्मीर के बारे में खुलकर बहस करने की जो गुंजाइश पैदा हुई है वो पहले कभी नहीं महसूस की गई। मौजूदा अराकीन पार्लियामान बड़ी खुश उसलूबी के साथ अपने मैंडेट का लिहाज कर रहे हैं और बुनियादी तौर पर उन्हें इसी का मैंडेट दिया गया है। पहले की कोताहियों का अजाला अगर जिम्मेदारी के साथ किया जाए तो कोई कमी महसूस नहीं की जाती है, बल्कि हुकूमत वक्त के तई भी एक मस्बत सोच उभरती है कि बहुत कम तादाद में मुंतखब नुमाइंदे होने के बावजूद उन्हें भरपूर वक्त देने की कोशिश की जाती है ताकि वो अवामी मसाइल को उजागर कर सकें। बिलाशुबा मरकजी हुकूमत और खासकर लोकसभा के स्पीकर का रोल सराहनीय है कि वो जम्मू कश्मीर के नुमाइंदों की हौसला अफजाई करके एक अच्छे तरीकेकार की बुनियाद रख रहे हैं जिससे जम्मू कश्मीर के आवाम में एतमाद की एक और मजबूत फजा कायम हो रही है। पहले भी नुमाइंदे भेजे जाते थे लेकिन बहुत कम उनके बारे में सुना जाता था, लेकिन अब तादाद दो ही है लेकिन बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है जो मुस्तकबिल में आने वाले अवामी नुमाइंदों के लिए मिशल राह हो सकता है। इसके साथ ही तबसरा खत्म हुआ। इजाजत दें, शब बखैर।
2: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: हम आकाशवाणी करगिल से आपसे मुखातिब हैं, शब के 8 बजे चाहते हैं। समय अब हम आकाशवाणी दिल्ली से इस सप्ताह संसद में रिले करेंगे। रिले का इंतजार कीजिए।
4: प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर भारी हंगामा किया, इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा। हालांकि दोनों सदनों ने लंबी चर्चा के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी प्रदान कर दी। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को पूर्वाह्न 11 बजे लोकसभा की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम

बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। सदन ने सभी विजयी खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों और टीम इंडिया को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस समेत कई विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। इस कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो विपक्षी सदस्यों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। इस हंगामे के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने दोपहर 12:08 पर सदन की बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन से संबंधित इस विधेयक में परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। सदन की बैठक 2 बजे शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शाम 5 बजे बैठक पुनः शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सारे सदस्य तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन कांग्रेस और उसके कुछ साथी इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे। सदन में हंगामा जारी रहने के कारण कार्यवाही कुछ मिनट बाद ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक बार बार बाधित हुई और 4 बार के स्थगन के बाद शाम करीब 5:15 की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर सदन में हंगामा जारी रखा और बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने फिर यही मुद्दा उठाया और मांग की कि गृहमंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर सदन में बयान दें। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया। सदन में हंगामे को देखते हुए उपसभापति ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 3 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और विपक्ष के कई सदस्य आसन के समीप आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हंगामे को देखते हुए उपसभापति ने बैठक शाम 5:15 तक और पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। मंगलवार को लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले इस विधेयक को पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक सरकार की विद्यार्थियों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र लीक आदि की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारों के दौरान भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने परीक्षा प्रश्न पत्र निरोधक कानून को मोदी सरकार की विफलता का स्मारक करार दिया। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह को सदन में इसका जवाब देना चाहिए कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि इस संशोधन विधेयक को लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और उनकी सरकार की जिम्मेदारी का प्रमाण है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक भला कैसे रोक पाएंगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि सरकार जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहती है तो प्रधानमंत्री को कैमरे का एंगल नहीं बल्कि दिल का एंगल भी बदलना पड़ेगा। विधेयक पर देर रात तक चर्चा हुई जिसमें विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने

हिस्सा लिया, चर्चा अधूरी रही। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। वे विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। हंगामे के कारण बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और फिर शून्यकाल शुरू करवाया। इसी दौरान विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए और विद्यार्थियों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। सभापति ने हंगामा जारी रहने पर करीब 11:07 पर ही सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक दोबारा शुरू होने पर सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने फिर से गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मांझी ने कहा कि मूल विधेयक 2006 में बना था और इसमें समय तथा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप सुधार करने की जरूरत है। उपसभापति ने सदस्यों से कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था न बनते देख उन्होंने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। नीट पेपर लीक के पृष्ठभूमि में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में सख्त प्रावधान शामिल करने के लिए लाए गए इस संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस कारण सदन की कार्यवाही पहले एक बार करीब 40 मिनट के लिए अपराह्न 2:30 बजे तक और फिर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनि मत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस सांसदों की नारेबाजी के बीच ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट पेपर लीक के मामले में सरकार ने फौरन कार्रवाई की और 12 जुलाई को जांच सीबीआई को सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि कल इस मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है और सुनवाई शुरू हो गई है। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए संशोधन विधेयक के प्रभाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के साथ इस मामले में 5 महीने में फैसला आ जाएगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक के खिलाफ विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। इसका सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध किया और उनसे माफी की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि या तो नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस आधार पर उन्होंने देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया है या फिर वह माफी मांगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिना किसी तथ्य जांच और साक्ष्य के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। उसी दिन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाला विधेयक भी सदन में पेश किया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण भोजनावकाश से पहले सदन की कार्यवाही बाधित रही। भोजनावकाश के बाद सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। उच्च सदन में विधेयक पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे गृहमंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट यानी बहिर्गमन कर गए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपनी तुष्टीकरण की नीति के कारण वंदे मातरम को आजादी के बाद वह सम्मान नहीं प्राप्त होने दिया जो उसे प्राप्त होना चाहिए। विधेयक पारित होने के बाद कुछ सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद 3:15 पर बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।

0: बृहस्पतिवार को लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के शोरगोल के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित की गई। हंगामे के कारण कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और उसके बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उसके बाद बैठक शुरू होने पर सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। उच्च सदन ने एक दिन पहले ही विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पर सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है जो किसी राज्य व्यक्ति या विचारधारा के खिलाफ नहीं है। इससे पहले द्रमुक सांसदों ने विधेयक का विरोध किया। उधर राज्यसभा में भी हंगामा जारी रहा। शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस के बल प्रयोग को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा किया। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि 20 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र के दौरान विपक्ष का रवैया नकारात्मक रहा है। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदस्यों ने शून्यकाल के तहत लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल भी सामान्य रूप से चला। भोजनावकाश के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा पारित करवाने के लिए रखा। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाए जाने का सुझाव दिया तथा हाल ही में हुए छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई ज्यादतियों की न्यायिक जांच कराने की मांग की। विधेयक के समर्थन में भाजपा के बृजलाल ने कहा कि विधेयक यह प्रावधान करता है कि केंद्र एक विशेष एसआईटी का गठन कर सकता है और जांच एजेंसी को मात्र 2 माह के अंदर पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है तथा त्वरित अदालत को 3 महीने के भीतर अपना फैसला देना है। जदयू के संजय झा ने कहा कि विकास के पथ पर भारत आज जिस तरह से बढ़ रहा है उसका एक अहम कारण यह है कि बीते करीब 12 साल में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने कहा कि पहले परीक्षाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास थी, तब इस तरह प्रश्न पत्र लीक के मामले नहीं होते थे। विधेयक पर हुई लंबी चर्चा के बाद विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री श्री सिंह ने चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक सिर्फ एनटीए ही नहीं बल्कि यूपीएससी रैंकिंग और रेलवे और बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी परीक्षाओं को भी कवर करता है। उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने आसन के निकट पहुंचकर गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। अध्यक्ष ओम बिरला ने शोर शराबा को देखते हुए कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तो हंगामे की स्थिति जस की तस थी। विपक्ष के हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। सदन ने बिना चर्चा के ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: हम आकाशवाणी करगिल साहब से मुखातिब हैं। शब के 8:15 बजे चाहते हैं समय ने ये प्रोग्राम समाप्त करें फौजी भाइयों के लिए।

जय हिंद दोस्तों। फिल्मी नगमों पर मबनी फौजी भाइयों के प्रोग्राम लेकर इस वक्त आकाशवाणी करगिल से हम हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम सुनने वाले सभी फौजी भाइयों को हमारी ओर से खुलूस भरा आदाब, और आज के इस प्रोग्राम में खैर मकदम पेश करते हैं। दोस्तों आज के इस प्रोग्राम में आप चंद पुरानी तर्ज के फिल्मी नगमे समाप्त करेंगे।

अभी प्रोग्राम के आगाज में आपने किशोर कुमार और लता मंगेशकर को सुना। फिल्म थी सिलसिला। ये नगमा लिखा था हसन कमाल ने और मौसीकी तरतीब दी थी शिव हरी ने। दोस्तों प्रोग्राम की अगली नज़र उमराव जान फिल्म से। ये नगमा गायक कलाकार है अशरफ वस्ती। ये नगमा लिखा है शहरियार ने और मौसीकी तरतीब दी है खयाम ने।

0: हो जी भाई, अपना मनपसंद प्रोग्राम इस वक्त आकाशवाणी करगिल से समाप्त कर रहे हैं। दोस्तों, आपका ये प्रोग्राम मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज़, मीडियम वेव 684 किलोहर्ट्ज़, FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR एप्लीकेशन पर भी समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, फ़िलहाल प्रोग्राम में एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं और आप सुनते रहिए प्रोग्राम आकाशवाणी करगिल।
1: नई वॉशिंग मशीन।
2: अच्छा है।
3: Yes! क्या हुआ?
1: अरे, शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है।
2: अच्छी धुलाई होगी,
1: है ना?
2: बैंक अकाउंट की। पैसे लेते वक्त QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं होती, उनके सिर्फ पेमेंट के लिए जरूरत पड़ती है। इसीलिए नामालूम कोड या लिंक से चौकन्ने रहिए और नुकसान से बचिए।
1: बच गए धुलाई से।
2: ये नई धुलाई RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए।
3: पापा, ये सब?
5: माँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए।
3: ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD।
5: अरे, ये कैसे रह गया?
3: पैसे गए?
5: नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है।
6: ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें।
7: दादू, ये
8: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: सही कह रहा है।
0: वाफे के बाद फौजी भाइयों को फिर से अपने प्रोग्राम में खैर मकदम पेश करते हैं।

अभी आपने गुलाम अली को सुना फिल्म थी मेहताब। फौजी भाइयों, प्रोग्राम की आखिरी पेशकश लीजिए, समाप्त करें मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की मिली जुली आवाज़ों में ये नगमा। फिल्म का नाम है यादों की बारात। दोस्तों, ये नगमा लिखा है मजरूह ने और मौसीकी तरतीब दी है आर डी बर्मन ने।

दोस्तों, इसी नकमे के साथ ही फौजी भाइयों के लिए हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त भी अख्तितम को पहुंचा। इस बीच हम आपसे इजाज़त तलब करना चाहेंगे। दोस्तों, आप जहां भी रहे हमेशा खुश रहिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।

0: अभी आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे फौजी भाइयों के लिए। हम आकाशवाणी करगिल साहब से मुखातिब हैं। सामिन, अभी खबरों का वक्त हुआ चाहता है। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू खबरनामा रिले करेंगे। रिले का आप इंतजार कीजिए।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी। केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीता। 7 भारतीय मुक्केबाज आज फाइनल में खेलेंगे।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयां तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था।
1: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की। आज युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBBS स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
0: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में NDA सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: मुझे पूरा विश्वास है, आज यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, जिनकी नींव रखी गई है, वो सारे प्रोजेक्ट स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। आंध्र प्रदेश विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा स्रोत बन रहा है। मैं एक बार फिर इन सभी परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117.85 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है।
2: बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए स्वीकृत सहायता के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किश्त की अग्रिम राशि के रूप में 44 करोड़ 55 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। वहीं असम के लिए पहली किश्त के रूप में 379 करोड़ 35 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि गुजरात को 500 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, जिससे वित्तीय वर्ष 2026-27

0: की पहली किश्त पहले ही जारी की जा चुकी है, उसे दूसरी किश्त की अग्रिम राशि के रूप में 193.95 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। वहीं ओडिशा को दूसरी किश्त के रूप में 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के लिए पहली किश्त की अग्रिम राशि के रूप में 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस मंजूरी का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित राज्यों में जारी राहत और बचाव कार्यों को और सुदृढ़ करना है। प्रिया मंडल के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि राज्यों को हर महीने मिलने वाली किस्त के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थी हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आज महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री शाह ने कहा कि श्री डोभाल ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
2: भारत की सेना को आधुनिक बनाना, समसामयिक परिवर्तन करना, सेना के अंदर टेक्नोलॉजी और वीरता दोनों का एक अद्भुत फाइन ट्यूनिंग करना, कई प्रकार के बड़े फैसले अजीत जी के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं।
1: दिल्ली भाजपा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ संसद परिसर में कल धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि संसद परिसर के मकर द्वार के पास हुए प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने धार्मिक आस्था का मजाक उड़ाया, सनातन संस्कृति का अपमान किया और संत समाज का अनादर किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। एक रिपोर्ट।
3: पूर्वी सिक्किम में 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित नाथुला दर्रा सदियों से भारत को तिब्बत से जोड़ने वाले पुराने व्यापार मार्ग का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद हुआ सीमा व्यापार 2006 में औपचारिक रूप से फिर से शुरू हुआ। 2020 में कोविड महामारी के कारण रोके जाने तक ये बिना किसी रुकावट के जारी रहा। इसका फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। सीमा व्यापार सोमवार से बृहस्पतिवार तक चलेगा। इसमें गेट सवेरे 7:30 बजे खुलेंगे और हर रजिस्टर्ड व्यापारी को हर दिन 2,00,000 रुपए तक का व्यापार करने की अनुमति होगी। गंगटोक से मैनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: बलूच यकजहती कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहे जन आंदोलन पर पाकिस्तानी अधिकारियों की क्रूर कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। समिति के अनुसार यह दमनकारी रवैया असहमति की आवाजों को कुचलने की व्यापक सरकारी नीति का हिस्सा है। पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, केरलम, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटकपुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़

0: का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,59,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। केरला में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश से 6 लोगों की मौत हो गई। प्रभावित जिलों में 65 राहत शिविरों में 1400 से अधिक लोगों को पहुंचाया गया है। और अब ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
1: राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक देश के नाम किए। मुक्केबाजी में भारत ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। प्रीति ने महिलाओं की 54 किलोग्राम प्रतियोगिता में कनाडा की स्कारलेट समाना डेल गाडो को 5-0 से हराया। वहीं जैस्मिन ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में माइकेला वॉल्श को 5-0 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादुमणि सिंह ने रजत पदक जीता।
2: काफी अच्छा लग रहा है, मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल आया, तो काफी अगला कंपटीशन में और ज्यादा फोकस करूंगा और अच्छा आने वाला कंपटीशन में अच्छा मेडल लूंगा। मेडल मैं मेरे अंकल को दे दे करूंगा और BFI को, साई को और पूरा इंडिया जो हमारा टीम कोचेस है उन सबको दे दे करूंगा।
1: दिन का तीसरा स्वर्ण पदक आज एथलेटिक्स से आया, जब सोनम राणा ने पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत पदक अपने नाम किया। सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक हासिल किया।
0: इसके अतिरिक्त 7 भारतीय मुक्केबाज भी आज फाइनल में खेलेंगे। वॉल्ट फाइनल में देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार की चुनौती होगी। 5000 मीटर दौड़ के फाइनल में गुलवीर सिंह ट्रैक पर उतरेंगे। मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले फाइनल में भारतीय टीम खेलेगी। जम्मू और श्रीनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बंद होने के कारण रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बडगाम और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष सेवा सड़क संपर्क बाधित होने से प्रभावित यात्रियों को राहत देने और कश्मीर तथा जम्मू के बीच सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी। केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद न्यूज एट 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Swami Vivekanand Cultural Youth Center in Mysuru, credits Indian youth for progress in science, technology and sports. Prime Minister launches development projects worth 18,000 crore rupees in Andhra Pradesh. Center approves advance release of over 2,000 crore rupees as assistance to flood affected states. India and China resume cross-border trade through Nathula Pass in Sikkim. Flood fury continues in Odisha, 6 people killed in Kerala as incessant rain causes widespread havoc. And in Commonwealth Games, boxers Jasmine Lamboria and Preeti Pawar win gold medals. Para-athlete Soman Rana bags gold in men's shot put F57. Prime Minister Narendra Modi has credited Indian youth for achieving progress in the areas of science, technology and sports and called upon them to contribute in the areas of cleanliness drive, conservation of water and natural resources and gift Indian artifacts. He was speaking after inaugurating the Swami Vivekanand Culture

0: Cultural Youth Centre Vivek Smarak in Mysuru today. The Prime Minister emphasized that Swami Vivekananda's vision was to mentor our youth and empower them to work for nation building.
1: Swami Vivekananda युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
0: मिस्टर मोदी फर्दर सेड द कैपेबिलिटीज ऑफ आवर यूथ हैज ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया इनटू द सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मार्केट. New strides are being made in semiconductor manufacturing, innovations and in private sector space missions. Moreover, Mr. Modi underscored the progress achieved in the last 12 years in the field of education by establishing new universities and colleges, including ITIs, IIMs, IITs, AIMS, and increasing medical seats as well.
1: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए एम्स भी स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
0: Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar, Governor Thavarchand Gehlot and the President of Ramakrishna Math, Srimad Swami Gautamanand Ji Maharaj were present on the occasion. Earlier in the day, Prime Minister Modi launched development projects worth about 18,000 crore rupees, including airport, road and energy infrastructure at Vizianagaram in Andhra Pradesh. Addressing a public meeting, the Prime Minister said Andhra Pradesh is moving ahead at a rapid pace and the centre is fully committed to realising the vision of Swarna Andhra and Vikasit Bharat through large-scale infrastructure and industrial development.
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। मैं आप सभी को इन प्रोजेक्ट की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
0: Minister Modi also inaugurated the Alluri Sitarama Raju International Airport at Bhogapuram and said it is a launchpad for the aspirations of the state's youth. He announced that the airport has been named after freedom fighter Alluri Sitarama Raju, which will inspire future generations with the spirit of patriotism and public service.
1: बीते 12 इयर्स में देश के एविएशन सेक्टर ने असाधारण प्रगति की है। 2014 तक देश में केवल 74 एयरपोर्ट ऑपरेशनल थे, आज ये संख्या 166 है। एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है।
0: Prime Minister Narendra Modi will launch the Nasha Mukt Yuva for Vikasit Bharat Sankalp Abhiyan tomorrow through video conferencing. The launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse. Youth across the country from over 10,000 locations will participate in the program. Union Home Minister Amit Shah has approved the advance release of 2,117.85 crore rupees from the central chair of the State Disaster Response Fund, SDRF, to support the states affected by floods during the ongoing southwest monsoon. We have a report.
2: The assistance approved for the affected states includes 44.55 crore rupees to Arunachal Pradesh.

0: को महफूज रखने के शोबों में भी अपना रोल अदा करें और भारत में बनाई गई मसनूआत तोहफे में दें। जना मोदी आज मैसूरू में स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर विवेक स्मारक का इफ्तिताह करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि हमारे नौजवानों को राह दिखाना और मुल्क की तामीर के लिए काम करने की खातिर उन्हें बाइख्तियार बनाना स्वामी विवेकानंद का नजरिया था।
1: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
0: जना मोदी ने कहा कि हमारे नौजवानों की सलाहियत की बदौलत भारत दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल फोन मार्केट बन गया है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, इख्तराआत और प्राइवेट सेक्टर के खलाई मिशन में नई नई पेशरफ्त हुई हैं। इसके अलावा जना मोदी ने आईटीआईज, आईआईएम्स, आईआईटीज और एम्स समेत नई यूनिवर्सिटियां और कॉलेज कायम करके नीज मेडिकल सीटों की तादाद में इजाफा करके तालीम के शोबे में गुज़श्ता 12 साल के दौरान की गई तरक्की को उजागर किया।
1: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई आईटीआई बनाई गई, 9 नए आईआईएम, 7 नई आईआईटी और 13 नए एमबी स्थापित किए गए हैं। आज देश में एमबीबीएस की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आंध्र प्रदेश रियासत तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है और मरकजी सरकार बड़े पैमाने के बुनियादी ढांचे और सनअती तरक्की के जरिए स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के नजरिए को हकीकत की शक्ल देने के तहत पूरी तरह अहदबंद है। भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह करने के बाद एक जलसा आम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और तवानाई से मुतालिक बुनियादी ढांचे समेत तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों से मरकज और रियासत में एनडीए सरकारों के तहत रियासत की तेज रफ्तार तरक्की की अक्कासी होती है। जना मोदी ने नए हवाई अड्डे को आंध्र प्रदेश, खासतौर पर शिमाली आंध्र की तरक्की के रनवे और रियासत के नौजवानों की उमंगों के लिए एक लॉन्च पैड से ताबीर किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सैलाब से मुतासर रियासतों की मदद के लिए कुदरती आफात की सूरत में काम आने वाले रियासती फंड SDRF के लिए मरकज के हिस्से की 2,117 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेशगी रकम जारी करने की मंजूरी दी है। सैलाब से मुतासर 7 रियासतों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को इससे कबल माली साल 2026-27 के लिए SDRF की पहली किस्त मौसूल हुई थी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: मुतासरा रियासतों के लिए जिस इमदाद की मंजूरी दी गई है उसमें माली साल 2026-27 के लिए पहली किस्त की पेशगी रकम के तौर पर अरुणाचल प्रदेश के वास्ते 44,55,00,000 रुपए शामिल हैं। आसाम के लिए पहली किस्त के तौर पर 79,35,00,000 रुपए मंजूर किए गए हैं, जबकि गुजरात के लिए 500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। हिमाचल प्रदेश को पहले ही इमदाद की पहली किस्त मिल चुकी है और अब दूसरी किस्त की पेशगी रकम के तौर पर 193,95,00,000 रुपए मंजूर किए गए हैं, जबकि ओडिशा के लिए 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त मंजूर की गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र के लिए पहली किस्त की पेशगी रकम के तौर पर 500 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। उम्र दाखिला की वजारत ने कहा है कि मानसून की बारिश का सिलसिला शुरू होने के बाद से हुकूमत रियासती सरकारों के साथ करीबी तालमेल कायम रखते हुए सैलाब की सूरत हाल पर लगातार नजर रखे हुए है। वजारत ने यह भी कहा है कि सरकार ने जहां कहीं भी जरूरत पेश आई हर मुमकिन इमदाद फराहम की है। इसमें कुदरती आफात की सूरत में काम करने वाली फोर्स NDRF की टीमों को पहले से तैनात करना और दिफा की वजारत की तरफ से लॉजिस्टिक्स मदद फराहम करना शामिल है। दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट।

ni file programs na bakhanu ni khidmat la assalam alaikum yale programs na bakhanu ni yanta nga wazinyut nga chazdi program panuk zille kargili lokso yule na nukson se de yuluni tarikh pachi duk gachu gachuk spin yang de nuk nga ti khas kar tourist la te chichiyot don iskol la trisorik yanta sak pahlep chugun cha yong sin dyanazum se dring zille kargili mingbing yul sot ilaqi yurbal tak na khyong spit risu yanta sak pahlep chugit yale programs na bakhanu dring आकाशवाणी करगिली टीम चिक जिले करगिली सब बजिक फलचन यूल छनासोत इलाका जरे अति जिले करगिली अनु को गुन योजु छनासोत इलाके अनुना दुनमसी अति खर योत पी ठाठा खान चुक अति दी का छुक्स पी यदि का तखजान दुजु छना युरबल तक जरे दुक युरबल तक का या अचल हेप सोत दी का गने अंबो हाजी मोहम्मद हुसैन या दुना हाजी मोहम्मद अली हाजी साहब सलाम।

0: alaykum
1: alayka salaam
0: alaykum salaam
2: baxsi ju chana nga ta nga yurbal ta gai ka na ju yurbal ta khzer ndu paju nga ti yurbal ta nga ti ata me spuni kna chi sor hajali sahab chi zeren ju
0: yurbal ta khzer mane yurbe ni ka zeren ju paju
2: acha di ta na di
0: yurbe ka tot pe ka yulpo
1: katot
0: pe ka lampo le ka ni yulpo pe ne yurbal ta nga ya
2: baxsi
0: yena spera
2: yurbal ta ga nani namza grompe cham chyo pindare cham se songsa da ju sen sa
1: Nani namzana chang buna phoe chane grom pa chob ye de tu ya na sana pa sa tik thale re song si yot
2: bashis
1: o ya dharang gar chimi nga chi met pa chang sa ko or chi tik tik ba se mal tik ba se ba de ta na na re na ma na shut pa me de
2: ta na di khar yot pe mal sa odi ka dare jame majir sik sa jug ju du pasar khari na ga khar pe
1: na pa jame majir se khan po khar men ju do khan ka in menin
2: acha
1: hankao majitiga doxes nan lam nur bakshe tus pianu du hanka in minchuk
2: acha
1: le yab na khel patena du deka phangsel los pana majit jos pin tuya ana khar po khar ma di mos pada sadi ka chama khane nan bodi ga da thon de samani
2: ha
1: ya bakshe da do ke ma se ka khar go kri ya tik pan yo tu pa na ta phut lai na yo ta na sik pan yo tu ya
2: bakshe
1: ana du ni ke khel patena de khachar ma ki khatar tha na ar pasar khar lagen na kor bin tuya
2: pasar khar gel la tab khar bin
1: mona al tab ben gel la yu khel patena do chana kon je ik smo son se khachar ma yo ma lo de ta na de kana gel na kes kanin tu pa ya bakshe de kana gel la khere kon aka duk se de re khes pe de yu lu ul do na wang tamam gami tre khari mal sab ra bu sak yo dare ya ga to sak tik pa sa ma yo dare ये तन यू खोई दृष्टि नाम नाम निशान छोट में
2: आबादी थी कल पेंसु खर पो
1: गया खर पो गया ना तन खो जिस मौत ने रिया दुख जमान है गया ना
2: बसेस
1: अरे ये जो पिकर दर बाद जी पिकर दर थे का क्यों खो चित बच्चे ना दिन ना कर पल्लो सा बम्बू ना कन लूट के चा दुनिया कन लूट के चा अर लूंग सिका सचात सरकार लूंग सिका लूट के चा दो दर बाद पिकर दिखा जा पतो टूट डून कंटान अगेन ला दुख पतो या
2: बक्षिस्ताना दी खर पु गा राजा सिक्स वे जो या सक बचे कर की लो छुक्सा खोरंग इसो दिन चगा चुक ची छोर जरांग
1: मन सक बदन छुक्सा ओ जो छुक्सा खोरंग सत असल पु कोरियन अन न यों तना यदा जुबना बिलार गुना यों तना अकना चो अचनो नि जों सुन टिक पु ओमा टिक पाइन लो टिक पु ए चो खोरंग इन जुया यों से दे प्रेस Bilar gole bana bilar gur ses tans millo.
2: Acha yo gol jons pin zuha juga.
1: O yo gol jons pin tu shilik tes. Ya de tana de pi kolla it pi chang Hindustan Pakistan mit pi. Do yo se de gole bana bilar gur ses tans yo tkan. De kana du chi ba sin tu bana chyo mo son ses tes tans sin tu de lo ya. De kana yo se shilik tes o hindur mas shilik tele automatic ta le bana ya wa kharan di ga du wa di ka khet pa chena se chak se du. De ga du pa khet pa chena shit por kha ga du. जरे ओमाटिक पा फोनो दे के जक्ष जोंस मिल लो ये कना चो खेत पचना थाटा खान देता खोदी फिर जों शुक्र बथांग के बिंग मिंचु कुर बथांग के बिंग मना एस त दिल त सेना सोत्यां नु इरा जों दिया नु जंगल थों सुखो दे तन दी पे सुपत पिन तु अर्थ सु तक पा तमन सप पा खूब बस मन जा सुपा गुल बुदुस खेत पर जत दुख सम जन खो दिल त सियों खान इन तुया नियों सनन दरे गुरबाल त गयों खान मिंचु अरे कितु मिली खेत पतिना लोटो थांबो दिसुन तो यामा की देखा कौन शास्त्र खेत पतिना यहाँ जो बस दुख से अपिक न अप गेत तुलो दे अपी न अप रावक गेत तुलो दे रावक पो दे खेरे दुख से दे रावक पो स्नाव चारक तिता सतंग मत पिलो दे रावक पे खेत पतिना ओर्जन पो तुम ही परी अंतिर बल्लो नो चिरे तुम परी गंग ओर्जन मलो परी चम चेत पिंपन वाला हुआ लाम ने कह दे ओर्जन पे फटारा के ओर्जन पाले का बोस असों मिल लो फेत पुलुस मिल लो फेत पो बोस असों बोस अचाना दी युल पो कहना आखिर पचना सुख से ता समसमा जिक पुल की सच्ची नहीं मोटा खाने देर लो और जी अजीक बने यंग संचाई देर देर राग ओर्जन पे कहना मोटा खाने लोटा चुक मिल लो या ने कहना चो अधक ने बिंग सेना या खर पे गांव सुन चुदीक
2: अच्छा दी गसन लखारियत पिला
1: ओ तना खार पखोर जब नस्तिक दे यों ना कना तो थां बिग ने बिन सिदिक यों स्पिन सु ने दी गने बिन सना पासर खाल ल सो मिन तो ओ ये पासर
2: टाटा खानिन सु पा
1: टाटा खानिन सु जत ना
2: बसिस चना लोटो गदे चना खो नोर छ चना दे चना आबादी यो पिन सु दे सब पे का
1: आबादी यत पे ना सा में अब पे क्रंग छ चना या
0: ओ लोसिया पो दे का छ खानिन तो

0: 계량비까? 누구 부서리 넣고, 내가 피한 쑥.
1: 로또 펑스
0: 로또, 뭐? 아뿌.
1: 아포 노
0: 아뿌,
1: 아포
0: 좋았다, 장아야.
1: 아자 아자
0: 내가 아슬리 카르프 거랑, 바사르 카르프 봐서, 니 그냥 카스쥬. 너 칸돌 카르프 봐. 니 칸돌 카르프 스나빠, 인쑥. 바사르 카르프 봐서, 니만의 민침에 데디까? 니 카르프만, 아슬리 카르프 스날라, 니 카르프, 알수뚝 라부, 너바, 그건 니가 왈렌탕스에 스틱스 밀러리까? 스틱스는 내가 공항 칼풀 단 만화 네가 같이 먹었 내는 경수 함라 잠비 두고라 생각해서는
1: 아, 매도 내가 같이 막
0: 어야
1: 자르는데
0: 내
1: 막 그럴 거야.
0: 막 경수 봐 아삐가 빈속 누스미 아삐가야
1: 아.
0: 내가 저쪽 같이 막아 박모가 사진 민속
1: 저 황색.
0: 저 황색 내가 니가 꿈 빠르는 각속 사스마
1: 야.
0: 스카르마 속속 야 스타는 스카르마 속속 대개는 뭐나 너 사마 가서 봐
1: 탑병
0: 뭐나
1: 열을 놓고.
0: 탑병 비를 놓고 탑병 매도 가져랑 갈랑세 당네 아 비랑 소스 빠래거나 노노 칸노 칼나 마을 그림스 거서 하 여랑디가 집에 놓으세요 내는 그 비압시가 빈속 야사대 말려 주아지 마추세 조속 조선을 알기 그래 랑스 빠나 칼파 뭐나 마을 그림스 거였어 내는 그 사태 두빈 아 게살레 뭐나 스마 게스 아티지
1: 아, 저
0: 겔타 레바
1: 겔사즈를
0: 오
1: 더줘요.
0: 아실루도 겔타 데가는 데
1: 겔사
0: 있잖아
1: 겔사메로.
0: 겔타 데가는 데 미사테나 샤과 파롤라 파르송 라이 파켄 너 파롤데 발로 나가 샬록만이 인투 아티데 율푸데 치토마리 야 지야 데가는 코소세 겔레 소스 마나 데 미치치 파슬링 스탄스 사테나 데가는 슈투 브라구나 브라크 디코노스 코스 사브루스 마데 하마나 런세 초초디카 Kapsuk mana kan dor kari siang darang yo brakpo cocok berarti brakpo degana de brakpo yang dia cocok kapsuk mana tas zer mana mana zer jangan tamaku tungen cilim tungen mazak tiap tek lus pinzeri tolok tolok pinzerin yo kan podiang kapsuk tangsuk
1: cocok orang sakit kuriya
0: kuri yo
1: tak
0: kan
1: ada
0: jak
1: hal
0: tau
1: yang
0: ma yo
1: mah
0: kan gak ma kuri yo kan poya
1: masih sah
0: yang kapsuk tangsuk pa de tamaku tungen cilim tungen दुक्सपिन लो रे का यार स्पेरा देखने 2014 नंगा हाजे सुमनिया
1: कासा
0: ना ना जक्सी ना आता छाना आ दे ब्रक पो रोल तां सेमाना जक तां से टोन तां से ब्रक
1: ब्रक पुरा
0: पो करा ओ ब्रु
1: या
0: सेमाना मी का तो ब्रु से ना चियत कान चो सिन तु पाया चो चो कप चो छ देखने मना ता ना मना सब से दो तां से दो बियर सिंग बियर कलिक तां से स्टेन तां से दो गया ने ना जु बसे दे गया मना
1: चाले
0: ब्रक पो ना लिंग सो ना ओया खंडोर खारी आधे करना एस्टी गुना ना युरबा खुमसे तेरे चारा के पेप ना चीज ना होने वाला हो दिया पेप चाक्चिक दे तेरे चारा के देने ताऊ से पेप दिख से छुका हुआ मत सुख और ना आया खाली चुचु सा जरें चीक नी देश तिंग ना आका सोमिन सुखों
1: बस
0: पसार खासा
1: नो माफूज
0: ओ
1: मचाना
0: दू माफूज माचाना
1: मचाना कर
0: एक का
1: लेकिन
0: सोसो
1: माफूज
0: ओ
1: बस सोचो
0: एक ने मन अति सब गांव मन को कोयोगा थों चीन मन
1: थोड़ी या गतंगा हाजी मरहूम हाजी अब्दुल हमीद तनवीरिस शोभू चानुक दी जिक्र दु की पसर खर सोती दे चेक थोन मोत पिर गुथो को पिंजरे तर से अर मग उन खतो दे गन थोंग मत पिंजरे ओ
0: जरे
1: गुथो यत
0: खोस
1: पिंजरे
0: दु चो सेसी ग जरे बे
1: ओ
0: छोर पिन
1: गुथो
0: पा
1: यत
0: यार
1: पिंजरे
0: गुथो यत पिंजरे छोर
1: नो
0: गता
1: गुथो
0: खांदे
1: यत
0: पो मेने गता खै खारी असली डंचाओ माथों
1: माथो
0: याना
1: ने मचेस
0: मत्या प्रवागला खै पूरा डंचा माथों ये दे गन मन दे गन पूरा राज बिनचिक लुट चोंगे सा खोगे नेरे का स्टा बालांग का पुप देने लोरी का दिगने लुट खेल बच्चों पे लूं लागा ब्यामास गलपा चंदरे चिक जिंग चोट दिगने मोबो मनस गलपा बुत पिंच जाना लुट कैसे सास कैसे नती सोती चे रास पुदी के ना दिन न सकपा पिलो क्या तिंग मोस गंग सकपा
1: अच्छा
0: ओ
1: ले आर
0: ले दी
1: ले
0: के ना गरांग दुरुम सकपा दी स्किन मास सकपा जो हम होंबु सकपा हिमबाप सी गुनियाल छू सक पा गुनियाल छू शायद या ब्यांबा ती दे छू दुख तो शायद
1: शायद याद होती
0: आ रे चपा तीसो तीसी राज यो पिंच यार ना यार ये दिस बिन खाला खोरे और खान पो गामा सो ती चोयोक आ नींद मा खोरे और खान पो चिक्का नी चोयोक
1: चिकतानी चुना
0: जो
1: सोती चु
0: जो
1: अलग इन
0: फोनो
1: चु
0: फोनो
1: फोन इन चु
0: कौन चिक पा रियाल मालिक पुदी का खरदोस पुदी का दुख से ए छुनसे काका उन सिलिंग मालिक पुत चिकान ला दुख से
1: बसेस
0: ओ खोंग का कनो फोनो नीज पिन सु खोंग इस का बास चे इख्तलाफ सु सु काका नो इख्तलाफ छ न जी ने सोत न मख खेरे खै फुगे चिकन खारी इस गो खुरी का सास पिन रा
1: बसेस
0: लोग